एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप

0: ये प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आरंभ करते हैं देश वंदना से।

भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए सुने जगजीत सिंह के स्वर में ये भक्ति रचना।

जगजीत सिंह और साथियों की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः

0: के 6:30 हुए हैं। पेश है सामयिक सुझावों का कार्यक्रम खेती की बात। इसमें आज जानकारी धान को कीटों से कैसे बचाएं, इस विषय पर वाचन स्वर अभिनय गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। पिछला भाग में हमन जाने धान में लगे वाले तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसन कीट के बारे में। आज हम जानबो धान के फसल ला कीट मन से बचाए बर जैविक और प्राकृतिक उपाय का है। अगर कीट के प्रकोप ज्यादा हो गए है तो दवाई के इस्तेमाल कौन ढंग से समझदारी के संग करे जाए, एहू ला जानबो। सबले पहली बात करथन नीम के। नीम आधारित कीटनाशक खेती में बड़ उपयोगी हो सकत है। बाजार में नीम तेल और नीम आधारित तैयार जैविक उत्पाद आज हर जगह उपलब्ध है। इखर इस्तेमाल उत्पाद के लेबल में लिखे मात्रा और तरीका के अनुसार करे जा सकत है। खासकर जब कीट मन के प्रकोप शुरुआत अवस्था में है तब नीम आधारित उत्पाद से कीट ला नियंत्रित करे में मदद हमन ला मिल सकत है। लेकिन किसान भाई हो, केवल नीम के छिड़काव करके खेत ला छोड़ देना सही नहीं है। खेत के निगरानी सतत निगरानी करना घलव जरूरी है। अब बात करबो लाभदायक कीट मन के। हमर खेत में हर किरवा, हर कीड़ा, हर कीट नुकसानदायक नहीं हुए। खेत में मकड़ी, कुछ परजीवी कीट और दूसर प्राकृतिक शत्रु होते जोन मन नुकसानदायक कीट ला खाते और ओखर संख्या ला कम करते। जैसे सांप ह मुसवा ला खा के मुसवा के बढ़त आबादी ला कम करते, वैसन है कुछ कीट होते। एखर बर बिना जरूरत हर पर तेज कीटनाशक के छिड़काव करने से हमन ला बचना है। ज्यादा और गलत दवाई से नुकसानदायक कीट मन के संग संग लाभदायक कीट मन भी मर सकत है। धान में फेरोमोन ट्रैप भी उपयोगी हो सकत है। एकर उपयोग मुख्य रूप से कीट मन के निगरानी बर करे जाते। एकर उपयोग से किसान मन ले पता लगाए में मदद मिलते कि खेत में कोनो खास किस्म के कीट के संख्या बढ़त है या नहीं बढ़त है। कुछ जगह मन में ट्राइकोग्रामा जैसन जैविक नियंत्रण एजेंट मन के उपयोग तना छेदक के नियंत्रण बर करे जा सकत है। एकर बर कृषि विशेषज्ञ मन सो सलाह लेना उपयुक्त होगी। आखिर में बात करबो रासायनिक दवाई मन के। किसान भाई हो, अगर खेत में कीट मन के संख्या ज्यादा हो गए है और जैविक जिनिस उपाय से नियंत्रण नहीं होते तब कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित कीटनाशक मन के इस्तेमाल उपयोग हम अपन खेत में अपन फसल में कर सकत हैं। तना छेदक पत्ती लपेटक जैसन कीट मन बर क्लोरेंट्रानीली प्रोल कार्टाइप हाइड्रो क्लोराइड जैसन सक्रिय तत्व वाले दवाई कुछ परिस्थिति में उपयोग करे जा सकते है। लेकिन ये मेरे एक बात और बताओ कि हर दवाई के उपयोग मात्रा और समय अलग अलग हो सकते है। एकर बर किसान भाई हो, दवाई खरीदत खानी दुकानदार से केवल नाम पूछ के दवाई नहीं लेना है। पहले बताना है कि धान कतका दिन के है, कौन से कीट दिखत है, कौन से कीट लगे है, कतका मात्रा में प्रकोप है और दवाई के बोतल या पैकेट में दिए निर्देश ला जरूर हमन ला पढ़ना है। दो अलग अलग कीटनाशक ला अपन मर्जी से मिला के छिड़काव नहीं करना है। अगर दवाई ला मिलाना जरूरी है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। दवाई के छिड़काव करत खानी हाथ में दस्ताना, शरीर ला ढके वाले कपड़ा और चेहरा के भी सुरक्षा के ध्यान रखना है। छिड़काव के बाद हाथ और शरीर ला साबुन से सरफ से बढ़िया ढंग से धोना है। किसान भाई हो, सबले अच्छा तरीका एकीकृत कीट प्रबंधन घला होते। एकर मतलब ये होते कि केवल हमन ला कीटनाशक दवाई के ऊपर ही निर्भर पूर्ण रूप से नहीं रहना है। खेत में नियमित सतत निगरानी करना है, संतुलित खाद के उपयोग करना है, जरूरत के अनुसार ही पानी देना है, नीम आधारित जैविक उपाय ला भी अपनाना है, लाभदायक कीट मन ला बचाना है, फेरोमोन ट्रैप जैसन व्यवस्था के भी उपयोग करना है और वास्तव में जब जरूरत हो तबे हमन कीटनाशक के उपयोग करें। एक तरह से खेती के लागत भी कम करे जा सकत है और फसल में अनावश्यक दवाई डारे से भी हम बांच सकत हन। अंत में किसान भाई मन से यही कहबो, कीट दिखाई देते तो घबराना नहीं है और ना ही बिना पहचान के दवाई डालना है। पहले कीट ला पहचानी जानी, ओखर बाद ओखर प्रकोप देखी, फिर सही उपाय ला अपनाना है। राम राम, जय जोहार।
0: धान फसल को कीटों से कैसे बचाएं, इस विषय पर आपने सुनी जानकारी कार्यक्रम खेती की बात में।

0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है रामचरित मानस गान, मुख्य गायन स्वर वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर का है। संगीत संयोजन किया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड 178 178।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है,

0: रामचरितमानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है चिंतन, विषय है अहंकार। आलेख श्री अशोक रहटगांवकर का है।
1: मनुष्य हमेशा अहंकार में जीना पसंद करता है। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है और मन ही मन अपनी श्रेष्ठता पर इठलाता है। वो यही समझता है कि वो स्वयं श्रेष्ठ है और सामने वाला व्यक्ति उसके सामने दीन हीन और तुच्छ है। वो उसे अपने उपहास का पात्र समझकर उस पर अपनी कृपा दिखाने लगता है। लेकिन संत महात्मा तो कभी भी अहंकार नहीं करते। उनकी तप और साधना का प्रभाव इतना अधिक होता है कि अहंकार उन्हें छूने का साहस नहीं जुटा पाता। जिस नगर में संत तुकाराम रहते थे उसी नगर में एक धनाढ्य व्यापारी भी रहा करता था। उसकी तुकाराम पर अगाध श्रद्धा थी। एक रोज उसका ध्यान तुकाराम के वस्त्रों की ओर गया। संत श्री ने अपने शरीर पर मटमैले फटे पुराने मोटे वस्त्र पहन रखे थे। व्यापारी ने अपने कपड़ों से जब उनकी तुलना की तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो अत्यंत ही निकृष्ट कोटि के वस्त्र थे, जबकि व्यापारी के कपड़े रेशमी धुले हुए और अत्यंत महंगे थे। सेठ की श्रद्धा तो तुकाराम पर थी ही। उन्होंने सोचा कि क्यों न उन्हें एक नया और महंगा वस्त्र सील कर दे दिया जाए। सेठ ने एक बहुत ही कीमती रेशमी जैकेट सिलवाया। कुछ दिन बाद सेठ स्वयं उस जैकेट को लेकर संत तुकाराम के पास पहुंचे और बोले, हे साधु महात्मा, मुझे आपके फटे पुराने और मटमैले वस्त्र देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि क्यों न मैं आपके लिए एक कीमती वस्त्र सिलवा दूं। तुकाराम ने वो जैकेट उलट पलट कर देखा और बड़ी विनम्रता पूर्वक उसे लेना अस्वीकार कर दिया। सेठ ने पुनः आग्रह करते हुए कहा कि संत जी, आप तो जानते ही हैं कि आप पर मेरी अति श्रद्धा है और यदि आप मेरी भेंट लौटा देते हैं तो मेरा दिल टूट जाएगा। संत तुकाराम ने उस व्यापारी का आग्रह और श्रद्धा को देखते हुए वो कीमती जैकेट अपने पास रख लिया। सेठ ने समाधान दिखाते हुए संत श्री से कहा कि इसे सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, इसे आपको पहनना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जैकेट अत्यंत अर्पित भाव से आपके लिए सिलवाया है। आप इसे अवश्य पहने, मैं देखने जरूर आऊंगा। कुछ दिन के बाद सेठ को जैकेट की याद आई और वो तुकाराम की कुटिया की ओर चल पड़ा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि संत तुकाराम ने उसके द्वारा दिया गया जैकेट पहन रखा है। लेकिन वे जब संत श्री के करीब पहुंचे तो पाया कि इतना कीमती जैकेट उन्होंने उल्टा पहन रखा है। सेठ ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, आपने जैकेट पहना तो है लेकिन वो उल्टा पहना है। इस पर तुकाराम बोले, नहीं, मैंने तो ठीक ही पहना है, शायद तुम्हें यह उल्टा लग रहा है। मखमल का भाग शरीर से चिपका कर रखा है ताकि मखमली सुख भोग सकूं, और बाहर से अस्तर इसलिए रखा है ताकि भक्तों को पता चले कि संत महात्मा इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उस दिन उस व्यापारी को पता चला कि संतों पर अहंकार और लक्ष्मी का कोई प्रभाव नहीं होता, वे सादगी का जीवन ही व्यतीत करते हैं। हमारा वैभव, हमारा अहंकार, धन दौलत, सब कुछ उनकी विद्वता और सरलता के सामने धरा रह जाता है। उसने संत श्री से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि आप जैसे वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही करें।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे। विषय था अहंकार। आलेख श्री अशोक रहटगांवकर का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा

7:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 से। छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर सुनिएगा 8:30 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:00 से, 11:30 से और फिर 12:00 से। आपकी पसंद कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 10:00 से। नए तरहने कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा 11:00 से। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 4:00 से। संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 5:05 पर। महिला बहनों का कार्यक्रम महिला सभा सुनिएगा 5:35 पर। इसमें चर्चा होगी स्मार्टफोन सुविधा भी सावधानी भी इस विषय पर। साथ ही क्रम परिसंवाद प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। ईमेल करें गीत सुने फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये कार्यक्रम सुनिएगा 6:20 पर और फिर 7:00 से। किसान वाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 7:30 पर। रात्रि 8:00 श्रोताओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:20 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का और विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे 10:30 से 11:00 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई 82 में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 को 7:30 से 8:00 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और फिर 7:00 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

एम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं त्रयोदश सहस्र कोटि रूप्यकाधिकाः पञ्च परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु चतस्रः रेलमार्ग सम्बद्धाः, एका च राजमार्ग सम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री

0: अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल ओडिशा तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु चतुर्षु राज्येषु रेलमार्गस्य अष्ट बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,900,000,00,000 रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000,000,000,000 वर्षात् 31,000,000,000 वर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग द्वाविंशति इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,5,3,000,00,000,00,000 रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अंतर्गतम् रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीन देशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तं अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि दृश्यचित्राणि च चीन देशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत् एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मंत्री उक्तवान् यत् भारत चीन सीमा सम्बद्धः विषयः गंभीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशील विषये मिथ्यानि उतवा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदन पत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 24 दिनांकं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूप मतदातृसूची अस्य मासस्य 31 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानाञ्च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य 30 दिनांकं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादश दलात्मकस्य विपक्ष संयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे 2 वादनादारभ्य सायं 5 वादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा, सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर

0: पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

0: श्रोताओं, आज 20 अगस्त है और इस दिवस को हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म दिवस की याद में सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव जी भारत के 7वें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1944 को हुआ था। देश में शांति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हिंसा और भेदभाव को छोड़कर आपसी प्यार और सहयोग की शपथ ली जाती है। राजीव गांधी जी ने भारत में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति की नींव रखी थी। युवाओं को अधिकार देते हुए मतदान हेतु 21 वर्ष की आयु संबंधी पात्रता को घटाकर उन्होंने 18 वर्ष कर दी थी। 18 वर्ष की आयु के नवयुवकों को मताधिकार प्राप्त होने से युवा शक्ति को लोकतांत्रिक निर्वाचन में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप निर्वाचन में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने का श्रेय भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जाए, जिससे ग्राम विकास संबंधी निर्णय स्थानीय स्तर पर पंचायतों द्वारा लिया जा सके। साथ ही साथ पंचायतें और स्थानीय निकाय अपनी प्राथमिकता तय कर विकास में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा सके। महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और वे पंचायत और स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर अपने अधिकारों का प्रयोग विकास में कर सकें, इस उद्देश्य से पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण देने का श्रेय भी स्वर्गीय राजीव गांधी को प्राप्त है।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: श्रोताओं, महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारा देश गांवों का देश है। इसी बात को ध्यान रखते हुए ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें और ग्रामीण छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सकने, इस उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत भी स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम भी आया और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उत्कृष्ट अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजीव गांधी पूर्व में पायलट की नौकरी करते थे। 31 अक्टूबर 1984 को आपकी माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के असामयिक निधन पश्चात वे अमेठी लोकसभा से निर्वाचित हुए। वर्ष 1985 में उन्होंने संदेश यात्रा की घोषणा की। साथ ही बता दें कि भारत यात्रा हेतु उन्होंने शुरुआती बिंदु के रूप में चंपारण से भारत यात्रा की भी शुरुआत की थी। इसके साथ आगे उन्होंने 19 अक्टूबर 1990 को हैदराबाद के चार मीनार से सद्भावना और पारस्परिक सौहार्द के उद्देश्य से सद्भावना यात्रा भी शुरू की थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 2400 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इसे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार, किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर न रखें ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल ना करें। अपने वाहन

0: चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। माल वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड ना करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है, अतः नशा से दूर रहें। नशा कार वाहन चलाने की गलती कभी ना करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। प्रकृति की सुंदरता इन दिनों सहज ही दिखाई पड़ती है। हरितिमा की चादर ओढ़े धरती माँ ने मानो श्रृंगार किया हो। एक ओर जहाँ इन दिनों शिवालयों में जलाभिषेक करने लगातार भक्त पहुँच रहे हैं, वहीं सावन के इस महीने में कई मंदिरों में झूला उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षक झांकियों सहित सजाए गए झूले पर विराजित किया गया है और उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया है। 18 दिवसीय झूला उत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें रामायण पाठ, आरती, पूजन और सहस्त्रनाम पाठ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही रात्रि में भजन और लोरी गायन कर प्रभु को शयन कराया जा रहा है। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा सावन उत्सव भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ससुराल से मायके आई बहन बेटियों के लिए अनेक स्थानों पर तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ साथ सावन उत्सव के इस आयोजन में महिलाओं के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। हरे परिधानों को धारण कर पूरे उत्साह से महिलाओं की सावन उत्सव में भागीदारी ने इन आयोजनों को बेहद आकर्षक बना दिया है। मेहंदी लगाना, हरे परिधानों के साथ श्रृंगार करना और सावन उत्सव में भाग लेना और श्रद्धा भक्ति सहित पूरे सावन महीने में उत्सवों का ये क्रम चलने से सभी में आनंद का संचार होना भी स्वाभाविक है। श्रोताओं, सावन का महीना हमें प्रकृति से जोड़ता है। ये सिर्फ उत्सव मनाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने प्रकृति के संरक्षण के लिए भी इन दिनों प्रयास करने का अच्छा समय है। पौधारोपण करने के लिए भी ये समय बेहद उपयुक्त है। हम अपने आसपास खाली जगहों पर, उपयुक्त स्थानों पर पौधों का रोपण करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें बड़ा होने में सहयोग दें। हमारा ये छोटा सा प्रयास हरियाली लाने में सहायक होगा, साथ ही साथ पिछले कुछ समय में हमने देखा कि ग्रीष्मकाल में घटता जल स्तर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। उससे निपटने के लिए भी हमें अपने स्तर पर वर्षा जल के संग्रहण का प्रयास आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक बड़ी जल राशि अपने उपयोग के लिए बचा सकेंगे, साथ ही साथ भूजल स्तर को सुदृढ़ बनाने में भी हमें मदद मिलेगी। हमारे द्वारा छोटा सा प्रयास प्रकृति और पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम

हो सकता है। तो आइए आज ही से हम शुरुआत करें, कुछ पौधे लगाएं, वर्षा जल का संग्रहण करें और अपने पर्यावरण को समृद्ध बनाने में सहभागी बन सकें। और फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब आज सुबह कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए मानस तिवारी को। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

आज सुबह कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार भप्पी लहरी। पेश है आज का अर्जुन फिल्म की ये गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश लता मंगेशकर के स्वर में वर्मा मलिक का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया बलमा फिल्म का ये गीत।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा आर डी बर्मन का संगीत बद्ध किया जुर्माना फिल्म का ये गीत।

सदाबहार नग में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया आपकी कसम फिल्म का ये गीत।

आपकी कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज

0: राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण

0: भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियां, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश

0: उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गौर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नव भारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर।

माटी के स्वर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है हमारे इन श्रोता साथियों ने। पटपर भाटापारा से मोतीलाल संतोष कुमार यादव, मुंडुल यादव, सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार, प्रीति यादव, योग्य और मोक्ष कुमार यादव, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू, युग कुमार, भाटापारा से राम कुमार, अमरीका, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, हटौत बाजार लाहौत से कमलनाथ पटेल,

राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल, दुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू, मगरलोड जिला धमतरी से पुन्नूराम साहू, तेजेश्वरी, राजश्री और राजवीर साहू। आप हैं भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से शियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबिया निशा, रायपुर से नीलू मेक। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पंचराम मिर्जा और कुलवंतीन बाई के स्वर में ये गीत।

माटी के स्वर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत नकुल जायसवाल और साथियों के स्वर में पसंदकर्ता श्रोता हैं दयालबंद बिलासपुर से पद्माकर, सविता, अश्लेषा और आदित्य राउत। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम, फुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाव्या और टानिया रजक। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। दतरेंगी से भावगत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। दतरेंगी भाटापारा से नोकेलाल, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। रोहासी से डगेश्वर राम साहू, नूतन साहू, घनश्याम और अलका जहानवी साहू। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चांटीडी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। आप सभी की पसंद पर पेश है नकुल जायसवाल और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने, पौड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी रानी बबली, सुमन मंटू, मिष्टी सृष्टि, दृष्टि गन्नू, गणेश कान्हा, कृष्णा और अंशु साहू। पौड़ी पाली से राम स्नेही, मीना ब्रह्मानंद, परमानंद, संध्या प्रियंका, हर्षु महिमा, प्रज्ञा, तन्मय, रोमांश और आनंद साहू। पाहरा अहिवारा से पोषण, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। पटपर भाटापारा से मोतीलाल, संतोष कुमार मुंडुली।

यादव, ग्राम सूरजपुरा से सुरेंद्र कुमार प्रीति, योग्य और मोक्ष कुमार यादव। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है नवलदास और अनसुईया के स्वर में ये गीत।

कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई 82 में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। दूसरा फोन नंबर है 3100026। फोन नंबर एक बार फिर 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब फिर रुक करते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर के अगले गीत की ओर। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, गंडई चौक, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी और रौनक सेन, रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डीकेश, वासु, डाली और पूर्वेश साहू। आप हैं श्याम साहू रोहासी से, रामजी विश्वनाथ साहू लच्छनपुर से, सिंघनपुरी से लव सिंह, ठगवा सिंह, लोकू, दशरथ, अनुज राम, सीताराम, तुलसी और श्याम शंकर, धनगवा पेंड्रा से कैलाश कुमार, चंदरबाई, संजना, सुरेंद्र, दरकेश, श्याम शंकर, प्यारे लाल सोनवानी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है लक्ष्मण मस्तूरिया के स्वर में ये गीत।

लक्ष्मण मस्तूरिया और साथियों के गायस गीत के साथ ही माटी के स्वर कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।

0: खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
5: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
5: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
5: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
5: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
5: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये जवानी है दीवानी फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। इसके साथ ही आज का ये सफर चित्रलोक का यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेबी साल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही

और उनकी एक झलक पाते ही भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

ने पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती बेफिक्र अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ

आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी कच्चे

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

दिल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ और सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को

0: ये चेहरा ऐसा खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी ना किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद ना करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

मलयालम फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

अदाकारा में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं, रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सेफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी इस चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आज।

0: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आज व्यापक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। वीबीजी रामजी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आज व्यापक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस दौरान बाढ़ की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के संचालन, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सहित आपदा प्रबंधन की तैयारियों का व्यावहारिक अभ्यास किया जाएगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान ग्रामीणों को वीबीजी रामजी योजना के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा में गांव की जरूरतों, प्राथमिकताओं और विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों से सुझाव भी लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों की नियुक्ति के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर जुडिशियल सर्विस और लोअर जुडिशियल सर्विस के कई जजों के तबादले किए गए हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को 29 अगस्त तक अपनी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही सूची पर खिलाड़ियों से दावा आपत्ति आमंत्रित की है। इच्छुक खिलाड़ी 23 अगस्त को कार्यालयीन समय तक विभाग की वेबसाइट sports.cg.gov.in पर ऑनलाइन दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटर्न डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बिहार के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कोरबा जिले में स्थित मिनीमाता हसदेव बांगो बांध में पानी की आवक कम होने से जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। स्थिति को देखते हुए बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए हैं। अब कुल 7 जल द्वारों के माध्यम से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा आज रेडियो श्रोता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर के वृंदावन हॉल में रेडियो श्रोताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के संस्थापक महेंद्र मोदी होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के दूसरे दिन आज भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देशभर से 500 से ज्यादा रेडियो श्रोता शामिल हो रहे हैं। कबीरधाम जिले में लोहारा थाना क्षेत्र के विचारपुर के पास मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आज व्यापक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। वीबी जी राम जी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं हरदेव लाला पारा वार्ड सिमगा से, रमेश कुमार, माया, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, इंदिरा नगर रायगढ़ से अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा, बालोद बंगला मटिया से शिव कुमार, अंजनी त्रंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप, आप सभी जांजगीर मेहंदा से, डिंपल देवांगन, हेमलता, कौशल्या, रोशन देवांगन बिलईगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, आप डोंगरगांव से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया अर्पण फिल्म का ये गीत।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, रसेड़ा कलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, कीर्ति, संध्या, डीकेश, वासु डाली और पूर्वेश साहू, पौड़ी भाटा कलतरा से दिलीप जोवाराम, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन, बीरगांव तखतपुर से जैमुन दिलीप रामायणी और भुवनेश्वर कोल, अकलतरा महमदपुर भक्तिन बाजार से रमेश राजकुमारी और आरती कैवर्त, सांकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा पूर्वी और खुशांत निषाद, शक्ति बहरा बेलगहना से श्याम शंकर, विजय रागिनी, गीता देवी, कैलाश सुरेंद्र, कुसुम और राधा पड़वार। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा आर डी बर्मन

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं दयालबंद बिलासपुर से पद्माकर, सविता, अश्लेषा और आदित्य राउत, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद, देव कुमार, नवीन और युवराज साहू, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा देबू और लवी श्रीवास्तव, लाहौद हटौद बाजार से कमलनाथ, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, बिलईगढ़ हटरी चौक से खीकराम देवांगन, रजनी, प्रियंका और रेणु देवांगन, आप हैं भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआं भाटापारा से शियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन, बमहर चांटीडी से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी और निधि देवांगन। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजों में, आर किरण का लिखा, राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया, हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम, फुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या और टानिया रजक, मगरलोड धमतरी से पुनूराम साहू, तेजेश्वरी, राजश्री और राजवीर साहू, बेलरगांव से मिथिलेश, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन, हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा, रोहासी से डगेश्वर राम, नूतन, घनश्याम, अलका, जाहनवी साहू, मोतीलाल झेरिया, कल्पना, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार, आप सभी मोती गार्डन भाटापारा से, भाटापारा से ही राम कुमार, अमरीका, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अभिजीत के स्वर में समीर का लिखा, आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया अंजाम फिल्म का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और खुशी रौनक सेन, बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, दतरेंगी भाटापारा से नोखीलाल, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, पौणी लाफा से विद्यानंद, त्रिवेणी, रानी, बबलू, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा और अंशु साहू, पौड़ी पाली से राम, स्नेही, मीना, ब्रह्मानंद, परमानंद, संध्या, प्रियंका, हर्षु, महिमा, प्रज्ञा, तन्मय, रोमांश और आनंद साहू, पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, पाहरा अहिवारा दुर्ग से, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया, तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

तेरे नाम फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम नए तराने। नए तराने कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अंकित तिवारी और पलक मुच्छल की आवाजों में समीर का लिखा, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का ये गीत।

0: नए तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुने ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध

0: संसाधनों उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 2400 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदा कदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इसे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हो ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर न रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड न करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है, अतः नशा से दूर रहें। नशाकार वाहन चलाने की गलती कभी न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: नए तराने कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत लिखा है, प्रीतम का संगीत है। पेश है कलंक फिल्म का ये गीत।

नए तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मीत ब्रास, अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में रॉय फिल्म का ये गीत।

नए तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा शंकर एहसान लाय का संगीतबद्ध किया टू स्टेट फिल्म का ये गीत।

नए तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मनोज मुंतशिर का लिखा बी पर्क की आवाज में केसरी फिल्म का ये गीत।

केसरी फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
0: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
0: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा।
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक

0: तितली के संघर्ष की।
1: वाह क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
0: श्रोताओं आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
0: जी
1: श्रोताओं कहानी कुछ इस प्रकार से है।
0: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
0: जी
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी आगे क्या हुआ?
0: जी जी जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओं ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
0: जी।
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओं उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी।
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी

0: 0044-045-559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है।
4: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां!
2: रिम झिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
2: जो कैसा लगा भाषा का ये खेल?
6: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
10: ये मारा! हरा दिया, हरा दिया।
11: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा।

0: जी
1: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
0: नाना जी
1: हा?
0: मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
1: ये कैसी अजीब बात है।
0: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते
1: हा?
0: हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
1: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
0: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
1: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही हैं बस।
0: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना।
1: हाँ,
0: जल्दी सुनाइए।
1: हाँ, बेटा सुनाता
0: हूँ। सुनाइए।
1: अरे सोचने तो दो,
0: जल्दी
1: सोचिए। मैं किसकी कहानी सुनाऊं, देखो।
0: अरे जीवन काका।
1: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
2: बाबूजी
1: हाँ?
2: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
1: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
1: यहाँ लेट जाओ
2: जी।
1: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
0: जी,
1: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
0: जी अभी लाई।
1: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
1: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
1: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी।
1: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
0: जी जी नाना जी।
1: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
1: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते

0: हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
2: बेटे एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा,
2: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी,
2: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
2: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
2: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था।

0: हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो, वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
1: जिसे बुखार होता
0: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी,
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
1: समझ गई ना
0: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: कल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी,
1: बोल कर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हा?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं, आइए जुड़े विविध भारती प्रसारण सेवा से।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा।

0: यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

किए गए हैं। राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी कर दी गई है और गरियाबंद जिले में पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए का गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों की नियुक्ति के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर जुडिशियल सर्विस और लोअर जुडिशियल सर्विस के कई जजों के तबादले किए गए हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को 29 अगस्त तक अपनी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही सूची पर खिलाड़ियों से दावा आपत्ति आमंत्रित करने की है। इच्छुक खिलाड़ी 23 अगस्त को कार्यालयीन समय तक विभाग की वेबसाइट sports.cg.gov.in पर ऑनलाइन दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटर्न डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इंटर्न डॉक्टरों ने सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि इस माह की 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस विस्तार से देश भर के पात्र युवाओं को इस अनूठे युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में पंजीकरण करने और भाग लेने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। गरियाबंद जिले के देवभोग से पुलिस ने तलाशी के दौरान मेटाडोर के टायरों में छिपाया गया 151 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत 75 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटघोरा में 50 करोड़ रुपए की एक ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रेन के बजाय फ्लाइट से दिल्ली जाने के आरोप में टीआई सहित 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने इसे अनुशासनहीनता माना है। गौरतलब है कि कटघोरा थाने के अंतर्गत एक वाहन एजेंसी संचालक से करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इस मामले के आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर कटघोरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुई थी। भिलाई के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिस्कोल प्लांट में क्रेन से लोहे की प्लेट गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान धमधा निवासी राजेश निर्मलकर के रूप में हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी शासकीय कार्यालय, संस्थाओं, कोषालयों और बैंकों में अवकाश रहेगा। अंबिकापुर में 15 वर्ष पुराने करीब 2,70,00,000 रुपए के स्कूल फर्नीचर खरीदी मामले में तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक सत्य प्रकाश पांडे और फर्म संचालक संजय पटेल को गिरफ्तार किया गया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्ग

0: प्रदर्शन केंद्र द्वारा कल 21 अगस्त को गौरेला के शासकीय आईटीआई में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 56 नए सिविल जजों की पदस्थापना के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी कर दी गई है। और गरियाबंद जिले में पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए का गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।
2: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरे कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर 2 यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन

0: की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात। इस फिल्म से मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, संगीत है रोशन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर की बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है, यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत एन दत्ता का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है, जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नजर कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। मां ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है, कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती हैं तो कभी जुबान

भी खामोश रहती है, लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं, मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ, इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है। सुनील दत्त, सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम आपसे इस गाने के बाद पूछेंगे।

इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आरडी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं। और

0: मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती, प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी। इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने पर से, तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो, और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई, और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाजें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी आवाज किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मी कांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ,

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज़ है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलक से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब, इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है, और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना। हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल, रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना, आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं, या हमारे आसपास होते हैं, या हमारे दोस्तों में, या ऑफिस में, या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी, या आपके आसपास, या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी, आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है, जिन हालातों से वो गुजर रही है, उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आजादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है।

और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग-अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है। कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है। मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदी होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना, प्यासा फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज में है।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें, तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत

0: के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल

0: या पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है पोर्टल के माध्यम से।

0: दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने
2: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ। प्रेम धवन के बोल, संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, सहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी ना

0: संसवतिया हाय संसवतिया न लाओ शाम पैया करूं संसवतिया न लाओ शाम।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम शराबी।

आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
1: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
1: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती वहां इशारों में भी बातें होती है, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही है, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
1: जी।
0: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
1: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में हम
0: बात करेंगे। और चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए इस बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
1: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत,

0: यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
1: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला
0: बिल्कुल
1: के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे।
0: बिल्कुल, शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए
1: जी,
0: सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
1: और ये
0: और
1: खाली
0: बिल्कुल
1: एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
0: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहाँ पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
1: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़ें, प्रगति करें एक गीत के
0: एक गीत
1: साथ।
0: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती, कि प्राकृतिक जो चीजें

0: है उनका इस्तेमाल किया जाता
1: हाँ
0: है, किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहाँ रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल। और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता
0: हाँ
1: है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है पर्व है तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस
1: हाँ
0: वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी, अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी,
1: हाँ जैसे
0: अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल। संयुक्त तो परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है
0: जी
1: ना, तो सब आपस में ही सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी।
0: क्या बात
1: उन्होंने
0: है,
1: पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल। और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की, लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दूह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
1: हाँ,
0: बना दिया
1: चित्र
0: था,
1: बना दिए थे।
0: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की, और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर 2 कोहबर, 1 कमलदह, 1 दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते
1: गीत
0: गाने भी
1: सुनवाते
0: सुनते हैं
1: हैं।
0: तो सुन ले।
1: हाँ

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांगने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग

0: अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है, जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुनिए गाना।
1: एक गीत।

0: हम
1: दीवाने हो जाएगा।
2: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवन समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चल।

0: है जो
1: कहते तो
0: पाचा।
1: हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी।
0: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
1: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती हैं जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही।

0: लोग उनके बारे में जाने, और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुरा, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलु, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कार्बी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
0: कहते हैं
1: कुरुख,
0: नाम भी
1: कुरमाली,
0: शायद हमने सुने
1: लेप्चा।
0: नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि
1: बिल्कुल,
0: विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनकी हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है।
1: बिल्कुल।
0: भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है।
1: जो
0: अगर
1: लिखित में
0: लिपि
1: नहीं
0: से
1: है।
0: हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहालीस, दारमा, गांगटे, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं
1: बिल्कुल।
0: जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत, परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए। बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये
1: बिल्कुल
0: बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है, या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा
1: बिल्कुल
0: को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा?
1: बिल्कुल। और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो है, जुड़ी हुई जो उनकी लोकगीत है, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसे
0: एक
1: बहुत
0: संदेश
1: जरूरी
0: के
1: है।
0: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल
1: संदेश
0: लें।

0: बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का
1: जी
0: उपयोग
1: जी
0: करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ चल
1: देखो,
0: सकता
1: जितना
0: है।
1: महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं, तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे
0: बिल्कुल
1: काम आती है, लेकिन
0: हाँ
1: जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है
0: बिल्कुल।
1: उसका अपना अलग
0: और
1: महत्व
0: साथ
1: है।
0: ही हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
1: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो

0: हाँ चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में
0: हाँ
1: महिलाएं या पुरुष उन लोक गीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष

0: में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद, लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां, उन्हें भी अच्छे से निभा लें। और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
1: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
0: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है।
1: हाँ।
0: और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
0: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं, यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवाय। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, या
0: हाँ
1: बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव, भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो
1: तब
0: जाता
1: होता है
0: है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और
0: बिल्कुल, तो
1: साथ ही
0: अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल, और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: है।
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ये बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ना बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए, जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं, क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं
1: बिल्कुल, एक
0: आगे।
1: हमारे जो साथी साथी हैं वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म कपड़े से गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी हैं जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली

0: आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख इस महीने की 31
1: होम थिएटर वगैरह रखता हूँ, उससे कनेक्ट करके ऐप के माध्यम से पूरे दिन भर चलते रहते हैं।
2: तो आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं?
1: मुझे सब प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं, जैसे 90 के दशक के जो गाने हैं ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो।
2: क्या बात है, बहुत अच्छे दशक की आपने बात करी है। और विविध भारती रेडियो स्टेशन से जो भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है?
1: दिन में फेसबुक पे आते हैं ना प्रोग्राम, सुवाना सफर वगैरह करके बहुत प्रोग्राम भी सुनते हैं, और सुबह चित्त पर संगीत उस पर 90 के दशक के और नए गाने भी सुनने को मिलते हैं, और मन चाहेगी वो तो आप सुनाते हो तो अच्छे लगते हैं।
2: और ये बताइए कि भोपाल में हैं आप, तो भोपाल में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप घूमने के लिए वहाँ पर आप बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगता है मैम, तालाब वगैरह भी है, यहाँ भोजपुर मंदिर भी है थोड़ा पास में, और बहुत अच्छे अच्छे संग्रहालय बने हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए।
2: जी
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुंचे हैं आकाशवाणी की स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। शिव शंकर कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के

0: साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे एसएसबी के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। एसएसबी हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
1: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर एसएसबी की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल-ए-तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्हा मन
0: जी,
1: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है, खास तौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे? और पढ़ाई में कितना मन लगता था? कैसा माहौल था घर में?
0: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी, जो एक बाजपट्टी पड़दौरा गांव है, वहाँ बिता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है
1: जी।
0: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है
1: जी। कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए वो देश सेवा में निहित है, नज़र आ रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं, तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप, शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है, और एसएसबी ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
0: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा ऐसी इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला
1: जी। और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको यह हासिल हुआ? क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
0: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया को चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा
1: जी। तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका

0: चयन हुआ, और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 की 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है, तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है। पर
0: उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए,
1: जी
0: सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया।
1: जी
0: इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए, ये हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक लड़का कोई जाकर फौज में भर्ती हो रहा है, वो सब के लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई
0: जी
1: भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे वो ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी पर ऐसा तो जरूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे सुनाओ ना कुछ किस्से कहानियां, क्या कुछ होता है SSB में, जहां जिस बटालियन के साथ जाते हो क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना कैसी जिंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपके किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी जुबानी उनको सुनते हैं ना तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई जिंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते, और यही कारण है कि आज जो देश के युवा भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
1: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है,
0: जी
1: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताए फौज में कैसे चलता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और
0: जी
1: काम करते हैं।
0: जी लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफर कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
1: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया। फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस है, वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं एसएसके बैंकटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एक

0: ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: ये सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था, रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
0: जी।
1: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और जो हमारे सहपाठी है, कार्मिक है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए, जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है, वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है
0: जी। जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे, और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है, आपके रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में, आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है जी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है, है ना? तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं, इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
1: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पे ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराते रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते, तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए, हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज, मैंने पहले भी बताया, एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छी तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है
0: जी। और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
1: ना तो है ही नहीं,
0: ना तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है।
1: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है
0: जी, निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती, उसके वक्त उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश पर होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?

0: थोड़ा मुश्किल तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा
1: जी
0: बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
1: जी सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: एक परिवार का जो सहयोग होता है, अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
1: जी, सब कुछ आसान हो जाता है। घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है। क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है। और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते?
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना, हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है, और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहाँ पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है, जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात करेंगे जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था।
0: जी,
1: ये सफलता मेरी नहीं, पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। एसएसबी इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
0: उनके मन में इतना डर बन गया था
1: और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि एसएसबी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जमुई ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें एसएसबी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया।
0: जी, एक बात और पूछना चाहूँगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
1: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिल के इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात है,
0: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
1: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उस करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण

आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं कहीं भी छूट न जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है

0: हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा।
1: जी, और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी है तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है।
1: जी, जैसा कि हम ने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं है तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
0: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, यह पूरी टीम का सम्मान है, और मेडल आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीकों से करने की प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
0: हमेशा कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसकी बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
1: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे DG महोदय के द्वारा भी DG सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
1: जी, इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश।
0: जी,
1: है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
0: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के तैयार रहते हैं हम लोग।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं। जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक जरूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी जुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पर काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस के इर्द गिर्द ही बुनते हैं, हम एक टीम की तरह एक टीम भावना के साथ काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पे काम किया है, इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी, उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
0: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतने अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
1: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
0: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
1: पार्टियां होते रहती है।
0: अच्छा,
1: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
0: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है?
1: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती
0: अरे
1: है।
0: अरे वाह, क्या बात है मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है, यूनिट में है, तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
1: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपने यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा?
1: वो सबके लिए होता है,
0: वो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि

0: एक महीने का सामान है तो वो एक महीने में खत्म होना है या वो उससे पहले खत्म हो जाता है?
1: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी उस सबके लिए होता है।
0: हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आयो ये बताओ क्या लेकर आए हो,
1: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
0: अच्छा ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
1: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
0: और रेडियो?
1: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिन दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
0: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो हैं ही, सहकर्मी तो हैं ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
1: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ सभी चीज़ होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्यौहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। हाँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
0: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
1: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
0: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
1: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
0: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदय पूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें।
1: सभी को जय हिंद मेरा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा, पर यह कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें?
1: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
0: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है, मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही है कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज पहुँचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिवशंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज़्यादा

0: खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है। संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिवशंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं। KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है। यहाँ पर दोस्त आपका नाम है KKS रायपुर CG, इन्होंने लिखा है क्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है। सुमन कर्माकर का सोनितपुर आसाम से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को। सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बोंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोक का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथ

0: साथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंढरा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, तनवारी, पोखरा, मदनपुर, चीनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, सिलाजू, उचेरवा, आबादी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, वन कोम्बो, सारंगडांड, बंदरचुआ, लोढ़ा आम्बा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाब, देव डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 88 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, पूंजी पथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के सोना खान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चनहाट, कोठारी, तालदादर, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोड़।

हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत आंधी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ें।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज थी, गुलजार का लिखा हुआ गीत और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, एसएच बिहारी का लिखा हुआ गीत, ओपी नैयर का संगीत है।

आशा भोसले की आवाज़, एस एच बिहारी का लिखा हुआ गीत और ओपी नैयर का संगीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी प्यार कांत प्यारेलाल का संगीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की है।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आनंद बख्शी की आवाज़ें थी इस गीत में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फिल्म थी चरस। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

पहचान फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। इंदिवर ने लिखा था, शंकर जयकिशन का संगीत था और मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज थी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से। लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाजें हैं, नीरज का लिखा हुआ गीत और एस डी बर्मन का संगीत है।

ये था कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसे आपने सुना आकाशवाणी बिलासपुर से। और आकाशवाणी बिलासपुर की एक सूचना आपको दे दें, आप महिला सभा में अपनी फरमाइशी गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए mahilasabhabsp@gmail.com में। महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से। तो ईमेल का पता एक बार फिर सुन लीजिए, mahilasabhabsp@gmail.com। तो आपके ईमेल्स का और आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 5:35 हुए हैं। अब आइए चलते हैं कार्यक्रम महिला सभा में।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। और सभी श्रोता सखियों को रेडियो श्रोता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्य से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। हमारी कोई सखी हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम ट्रांजिस्टर रेडियो में सुन रही होंगी तो कोई फोन पर, और कोई सखी स्मार्टफोन पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर। सखियों, स्मार्टफोन हमारे मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही हमारे बातचीत करने, ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग का माध्यम भी है। अगर हम बात शिक्षा की करें तो स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हैं, नई चीजें सीख सकती हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी उनकी मदद कर सकती हैं। स्मार्टफोन की मदद से हम ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा करना हो, पैसे भेजने हो या बैंक खाते की जानकारी देखनी हो, कई काम घर बैठे आसानी से किए जा सकते हैं। सखियों, स्मार्टफोन हमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और जरूरी सेवाओं तक पहुँच भी स्मार्टफोन के जरिए आसान हो गई है। सखियों, विश्व की खबरें हमें तुरंत आसानी से मिल जाती है हमारे स्मार्टफोन के इंटरनेट और वेबसाइट ऐप के माध्यम से। सखियों, स्मार्टफोन में हम किसी भी विषय से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं तो इंटरनेट और विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से हमें तुरंत उत्तर मिल जाता है। लेकिन जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण मामलों में जानकारी की पुष्टि किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ से जरूर करें। सखियों, स्मार्टफोन ने हमारी कुकिंग को भी और आसान और स्वादिष्ट बना दिया है। अब नई डिश की रेसिपी सीखनी हो या सामग्री की जानकारी चाहिए या बनाने का सही तरीका, सब कुछ उपलब्ध है स्मार्टफोन में। घर में बना डिश सेहत स्वाद के साथ, यानी सखियों, स्मार्टफोन हमारी रसोई का एक छोटा सा मददगार भी बन गया है। लेकिन बहनों, जहां स्मार्टफोन सुविधाएं देता है वहीं इसका सावधानी से उपयोग करना भी

0: जरूरी है। कुछ सावधानियां हैं, जैसे अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पिन, पासवर्ड या बैंक की जानकारी न बताएं, किसी अनजान लिंक या संदिग्ध मैसेज पर क्लिक न करें और बच्चों को भी समझाएं। साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी और तस्वीरें सोच समझकर ही साझा करें। फर्जी कॉल, लॉटरी या इनाम के झांसे में से सावधान रहें और ध्यान रखें कि कोई ठग, साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कोर्ट या किसी सरकारी अधिकारी का कर्मचारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और कहें कि आप अपराध में फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल ना डरें, अपनी कोई जानकारी उन्हें ना दें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ऐसा कॉल आए तो तुरंत कट कर दें। बच्चों को स्मार्टफोन देते समय उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें और एक समय सीमा निर्धारित करें। सखियों, साथ ही बहुत अधिक समय तक आप भी मोबाइल पर समय बिताने से बचें। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर तो असर पड़ता है, साथ ही हमारा काम, नींद, परिवार के साथ समय भी प्रभावित होता है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत और समय सीमा ही तय करें। सखियों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया आपके देखने, लाइक करने, सर्च करने और कितनी देर तक वीडियो देखने जैसी गतिविधियों को देखकर आपकी पसंद का अनुमान लगाता है, फिर उसी तरह की सामग्री बार बार दिखाता है, तो उससे बचे। और जरूरी है कि हम सभी सोच समझ कर सामग्री देखें और सही मानने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। समय और स्मार्टफोन का सदुपयोग जरूर करें। सखियों, ऑनलाइन कोई सामान खरीदने के लिए सर्च करते ही हम तुरंत खरीदने की जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उसे कार्ट पर डाल दें, थोड़ा रुकें, अलग अलग वेबसाइट पर उसकी कीमत, गुणवत्ता की तुलना करें, रिव्यू पढ़ें और फिर सोच समझकर फैसला लें। कई बार हमें बार बार दिखने वाला विज्ञापन देखकर लगता है कि सामान अभी खरीद लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सबसे अच्छा विकल्प हो, इसलिए सर्च करें, तुलना करें, थोड़ा इंतजार करें और फिर खरीदारी करें। साथ ही जरूरी ऐप ही डाउनलोड करें और उन्हें विश्वसनीय स्रोत से इंस्टॉल करें। कभी फोन खो जाने पर तुरंत बैंकिंग और जरूरी खातों की सुरक्षा भी करें। सखियों, स्मार्टफोन का उपयोग करने से डरना नहीं है, अगर उपयोग करते नहीं बन रहा है तो किसी जानकार व्यक्ति से सीखकर उपयोग करें, तकनीक का इस्तेमाल करें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर। सखियों, स्मार्टफोन बने सुविधा का साथी, सावधानी बने सुरक्षा की चाबी। तो बहनों, स्मार्टफोन को केवल मनोरंजन का साधन ना बनाएं, इसे ज्ञान, आत्मनिर्भरता और विकास का माध्यम बनाएं। सखियों, अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सस्ता नहीं, सही चाहिए, क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी में नो सरप्राइज, डोंट जस्ट बाय, रेज योर स्टैंडर्ड, अपनाओ इंडियन स्टैंडर्ड।
2: जी हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो भरोसा है, और इस भरोसे की पहचान है BIS क्वालिटी मार्क्स, ISI, CRS और हॉलमार्क। सो बी ए स्मार्ट कंज्यूमर एंड रेज योर स्टैंडर्ड विद इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: मैं श्रीमती मधु शर्मा कुछ पंक्तियाँ कहना चाह रही हूँ। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। पढ़ी लिखी बेटी रोशन करेगी घर, परिवार और देश। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान, शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान।
4: मैं श्रीमती रचना दुबे दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा ही नारी का गहना है, शिक्षा ही नारी का गहना है, इसे कभी न खोना है। तभी बेटी पढ़ेगी, तभी प्रगति बढ़ेगी। शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा है सुख का सार, बिना शिक्षा के होता है जीवन निराधार।
5: पापा, लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ,
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: हाँ।

0: भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड है तो सही है।
1: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम परिसंवाद की ओर। सखियो, कहते हैं एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह बच्चों के सपनों को दिशा देता है। बचपन की पहली पाठशाला से लेकर किशोरावस्था

0: थकी दहलीज तक। शिक्षक ही वह मार्गदर्शक होता है जो बच्चों में सीखने की जिज्ञासा, अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करता है। प्राथमिक कक्षाओं में जहां बच्चे अक्षर, शब्द और दुनिया को पहचानना सीखते हैं, वहीं मिडिल कक्षाओं में उनके विचार, व्यक्तित्व और भविष्य की नींव मजबूत होती है। तो सखियो, चलिए आज हम बातें करते हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमेरिकी शिक्षिकाओं से, श्रीमती रचना दुबे जी और श्रीमती मधु शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
1: नमस्कार प्रभा जी।
0: सबसे पहले रचना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं?
1: मुझे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं और ये मेरे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इन बच्चों को, जो कच्ची मिट्टी की तरह, उन्हें सही आकार देने का मौका मिला। मैं इन्हें सही उद्देश्य, इनकी मंजिल तक पहुंचा सकूं, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी।
0: मधु जी।
2: प्रभा जी, मैं 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूं। बचपन से मुझे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना अच्छा लगता था। हमारे गांव में पहले लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तब मैंने सोचा कि बड़ी होकर मैं भी बच्चों की जिंदगी बदलूंगी। बच्चों की मासूम हंसी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसलिए मैंने शिक्षिका बनने के लिए प्रयास किया और आज मैं शिक्षक बनकर खड़ी हुई हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए।
0: जी बिल्कुल। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज शिक्षा कितनी जरूरी है और प्रत्येक बच्चों को शिक्षित होना कितना आवश्यक है?
1: शिक्षा इसलिए जरूरी है, शिक्षा हमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको ज्ञान कराती है, बोध कराती है, हमें सही मार्गदर्शन दिशा देती है। शिक्षा प्राप्त करके ही बच्चे समाज व देश में सही मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज अपने माता पिता का सपना पूरा करते हैं, एक अच्छे पदों पर आसीन होकर देश दुनिया समाज का भला करते हैं। इसलिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें सही गलत, न्याय अन्याय, सही चीज का की परख करना सिखाती है। समाज में फैले जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, उसे भी दूर करने में शिक्षा बहुत सहायक होती है। शिक्षा के बारे में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ लिख ले हम, कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा से ही बनते हैं मंत्री, वैज्ञानिक, डॉक्टर और सीमा के रक्षक। बुद्धिहीनों को प्रज्ञा देती, बुद्धिहीनों को प्रज्ञा देती, अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान।
0: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। और मधु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों को पढ़ाते समय सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होती हैं?
2: कि बच्चे जो हैं वो माँ से सीखकर ही आते हैं। प्राथमिक शाला में बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चों को पढ़ाना कच्ची मिट्टी को आकार देने जैसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे माहौल से आते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई रुचि भी नहीं होती, इसलिए उन्हें मैं किताब से शुरू नहीं करती। पहले मैं कहानी, गाना, खेल और चित्र के माध्यम से उन्हें समझाती हूँ। गिनती कंचे और पत्ते से गिनवाती हूँ। हिंदी के लिए मैं कहानी के किरदार बनाकर रोल प्ले करवाती हूँ। और पर्यावरण के लिए स्कूल के जो किचन गार्डन है उसी से पेड़ पौधे दिखाकर उन्हें पर्यावरण के बारे में शिक्षा देती हूँ। और खेल खेल में ही उन्हें शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित करना चाहती हूँ, जिससे जो बच्चे रुचि नहीं लेते पढ़ाई में, वो रुचि उनसे जागृत हो और वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल से जुड़े, ये हमारा प्रयास रहता है।
0: जी बिल्कुल। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा लगातार स्कूल नहीं आता तो आप लोग कैसे उन्हें बुलाने की, स्कूल में लाने की कोशिश करते हैं?
2: देखिए प्रभा जी, सबसे बड़ी चुनौती है पलायन और गरीबी। फसल के समय बच्चे खेत चले जाते हैं, लड़कियों को पांचवी के बाद स्कूल भेजने में हिचकिचाहट होती है और फिर बिजली, पानी, बैठने की जगह की दिक्कत भी आती है। पर जब बच्चा पहली बार नाम लिखता है तब हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। जब वो नाम लिखकर दिखाता है तब हमें लगता है कि हाँ, हमने किसी को साक्षर किया है। जो हमें दिक्कत आती है वो हमारे लिए फिर कोई मायने नहीं रखता और हम उसमें इस प्रयास में लगे रहते हैं कि बच्चा पहले से जो बहुत बदलाव आए हैं। पहले माता पिता भी कहते थे कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, अब वही कहते हैं कि बिटिया को टीचर बनाना है, कलेक्टर बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये असर है कि अभी भी बीच में स्कूल छुड़वाने की सोच है, लेकिन ये सोच को हमें सबको मिलकर तोड़ना है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। इसलिए आजकल हम लोग स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। जो बच्चे लगातार स्कूल नहीं आते हैं तो हम उन पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर सैटरडे को महीने में कम से कम एक बार रखते ही हैं। और जो मतलब पेरेंट्स नहीं भी आ पाते तो हम उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम उनके पेरेंट्स से जुड़ सके और अपनी समस्याएं उनको बता सके, उनकी समस्याएं सुन सके, जिससे कोई समाधान निकल सके और बच्चा लगातार स्कूल में उपस्थित हो सके।
1: प्रभा जी देखिए, हम बच्चों को स्कूल के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, कैसे उनके अंदर एक रुझान पैदा करने के लिए हम के माता पिता से सर्वप्रथम मिलते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखिए, आप जिस तरह बेरोजगार हैं, जिस तरह आप लोग छोटे मोटे काम धंधे कर रहे हैं उनसे आपकी रोजी चल रही है, तो बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पदों पर जाएंगे तो उनको आसानी होगी, आपके लिए भी, आपका भी सपना है कि आपके बच्चे आपकी तरह न रहे, इसलिए हम उनको समझाते हैं, जागरूक करते हैं और बच्चों को भी हम इस विद्यालय की ओर प्रेरणा देने के लिए जब स्कूल आते हैं तो हम खेल द्वारा

0: आकर्षित प्रारंभिक में तो प्राइमरी लेवल बच्चों को आकर्षित ही करना है, उसके बाद उनकी आगे की चलती है प्रक्रिया फिर को पढ़ाने की, अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान ऐसे धीरे धीरे क्रमशः, क्योंकि छोटे बच्चों को हम एकदम से बड़े उनके पर नहीं ले जा सकते ना, इसलिए हम बच्चों को पहले मनोरंजक ढंग से ही पढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या कारण रहते हैं जिस कारण बच्चा स्कूल नहीं आ पाता।
2: सबसे पहले मैं वही बताई कि पलायन और गरीबी, गरीबी ही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे मजदूर वर्ग से आते हैं तो अधिकतर बच्चों के जो पेरेंट्स रहते हैं वो सुबह से ही काम में निकल जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है कि वो या तो घर में छोटे अपने भाई बहनों को पालता है या तो फिर खाना बनाता है या फिर आसपास खेलते ही रह जाता है और स्कूल नहीं आ पाता। इसीलिए हम लोग जो ग्रुप बनाए हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा उनके पेरेंट्स को प्रेरित करते हैं कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजे, जिससे कि वो मतलब जो समस्या है वो झेल रहे हैं, जो अशिक्षित होकर वो मतलब आज गरीबी देख रहे हैं उनका बाद में भविष्य में बच्चा वो वैसा ना निकले, कम से कम स्कूल आए आज एक साक्षर बने जिससे उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके।
1: जी, और जैसे कि बच्चा नहीं आता है तो उसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे वो नियमित रूप से स्कूल आ सके? एक तो आपने बताया कि हम उनके माता पिता से मिलते हैं, माता पिता के साथ साथ हमको बच्चे को भी जागरूक करना है कि आपको स्कूल आना है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं?
2: इसके लिए हम यही करते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल तक अगर आ गया तो हम उसको रोचक विधि से उनको पढ़ाते हैं जिससे वो स्कूल में जुड़ा रहे। आजकल AI पद्धति से भी पढ़ाई हो रही, डिजिटल माध्यम आजकल स्कूलों में लैपटॉप वगैरह दिया गया है, तो हम हर शनिवार को ऐसी क्रियाएं कराते हैं जिससे बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे, उसमें कहानी दिखाते हैं, उनको चित्र बनवाते हैं, योग कला शिक्षा सिखाते हैं। स्कूल बस्ता विहीन जो है, शनिवार का जो दिन दिया गया है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे क्या है स्कूल आने के लिए उनमें रुचि जागृत होती है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा खेल खेल में ही शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे बच्चा एक बार अगर स्कूल आ गया तो वो स्कूल छोड़े ना और स्कूल में उसकी रुचि बनी रहे।
1: जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों में अनुशासन और अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए आप लोग वहाँ पर स्कूल में क्या क्या चीजें उनको सिखाती हैं?
2: देखिए प्रभा जी, डांट से नहीं उदाहरण से, बच्चों में अनुशासन जो है और अच्छे संस्कार है वो डांट से नहीं उदाहरण से ही विकसित होते हैं। मैं खुद समय पर आती हूँ, सबको समय पे धन्यवाद नमस्ते जहाँ भी मतलब लगता है ये उनको बोलती हूँ, रोज प्रार्थना के बाद 2 मिनट अच्छी बातें बताती हूँ जैसे बड़ों का सम्मान, सच बोलना, पेड़ लगाना, छोटे छोटे क्लास मॉनिटर को देती हूँ, छोटे छोटे काम मॉनिटर को देती हूँ ताकि जिम्मेदारी आए, और हफ्ते में एक बार गुड टच बैड टच और बड़ों का सम्मान ये सब बारे में हम लोग बात करते हैं जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार और अनुशासन विकसित हो सके। साथ ही स्कूल और घर जो दो हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, माता पिता से बस इतना चाहिए कि वो रोज 10 मिनट बच्चों से पूछे कि आज स्कूल में क्या सीखा है, मोबाइल देखकर भूल ना जाए, फीस नहीं दे सकते कोई बात नहीं पर बच्चे की कॉपी जरूर देखे, टीचर को दुश्मन नहीं साथी समझे, क्योंकि शिक्षक एक साथी के रूप में एक सारथी बन के उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए ही है।
0: हम बच्चों को ऐसे भी सिखाते हैं जैसे लोग पर्व है उनके त्योहार हैं, वेशभूषा से संबंधित जो हम बोलते हैं कि बच्चे आज ये करके आओ, आज हम तुम्हारे पर्व मनाएंगे, जैसे भोजली आ रहा है अभी आगे हरेली, ये सबको हम स्कूल में मनाने के प्रयास करते हैं ताकि बच्चे सीखे अनुभव से देखकर और इसको अपनाए अपने जीवन में,
1: संस्कृति को अपनाना जरूरी है।
0: संस्कृतियों को
1: जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मोबाइल और डिजिटल माध्यमों का बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
0: डिजिटल मोबाइल वगैरह के हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे समय की बचत भी होती है और बच्चे थोड़ा सा मनोरंजक ढंग से बड़े स्क्रीन पे जैसे हम लगा के दिखाते हैं तो बच्चे उसे आकर्षित भी होते हैं, और बच्चे बोलते भी कि हम घर में भी मोबाइल से देखते हैं मैडम ये सीखते हैं, तो बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, सिर्फ सुनकर नहीं बच्चे देखते हैं उसमें पूरी गतिविधि, कहानियों को हम लोग यूट्यूब वगैरह में चलाकर जो ऐप है गवर्नमेंट तरफ बहुत सारे है उसको हम संचालित करते हैं, बहुत सारे स्कूल में TLMs वगैरह आते हैं उनको दिखाते, तो बच्चे सिर्फ सुनकर ही नहीं बच्चे देखकर भी अनुभव से छूकर भी सीखते हैं।
2: देखिए प्रभा जी, मोबाइल और डिजिटल माध्यम से ये फायदा और नुकसान दोनों ही हैं। अच्छा ये है कि यूट्यूब पर कविता कहानी मिल जाती है, लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी ऐप से गणित सीखना, और बुरा ये है कि बच्चे रील में खो जा रहे हैं। माता पिता से निवेदन है कि मोबाइल पढ़ाई के लिए दें और साथ बैठकर चलवाएं, बच्चे को फोन दीजिए पर बिस्तर पर नहीं टेबल पर, और 30 मिनट की टाइमर लगाकर खुद भी साथ उनके बैठिए। अगर अलग से आप मोबाइल देंगे तो वो उसका सही उपयोग ना करके रील देखने इसमें समय व्यतीत कर देंगे, इसलिए छोटे बच्चों के लिए जरूरी है अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो उनके साथ आप जरूर रहें।
1: जी बिल्कुल, हम माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज लड़कियों का शिक्षित होना, हमारी बच्चियों का शिक्षित होना क्यों जरूरी है?
2: लड़कियों का शिक्षित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लड़कियां दो परिवार को शिक्षित करती हैं। करती हैं। एक तो जहाँ रहती हैं वहाँ को शिक्षित करती हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो एक दूसरे परिवार को भी शिक्षित करती हैं। और अगर लड़कियाँ शिक्षित रहेंगी तो उसके

0: घर में सभी कोई शिक्षित होंगे, क्योंकि वो अपने घर परिवार के साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि सभी बच्चों को स्कूल भेजें और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, जिससे देश और समाज का नाम रोशन हो।
1: मधु जी और रचना जी, आपने ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की है, बच्चों की शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा की है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हमारे श्रोताओं तक, अभिभावकों तक जरूर पहुंचेंगी। और आप जाते जाते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी रचना जी?
2: जी, मैं यही संदेश दूंगी कि समाज में शिक्षा अच्छी चीजों को अपनाए, बुरी चीजों को छोड़कर, और नैतिक शारीरिक शिक्षाएं जो विद्यालय से उन्हें प्राप्त होती है उन्हीं चीजों पर ध्यान दे, यही कहना चाहूंगी।
1: मधु जी, आप चलते चलते हमारे सखियों को क्या कहना चाहेंगी?
0: प्रभा जी, मैं अंत में बस इतना कहूंगी, स्कूल की घंटी बजे तो सिर्फ बच्चा नहीं, हमारा भविष्य आता है। बच्चा अकेले टीचर या अकेले माँ बाप से नहीं बनता, स्कूल घर समाज तीनों मिलेंगे तभी हमारा बिलासपुर, हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश में भी हमारा नाम रोशन होगा।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने संदेश दिया है हमारी सखियों को, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी उपस्थिति और बेहतर शिक्षा के लिए आपके जो प्रयास है प्रेरणादायक है, और आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम परी संवाद में शिक्षिका श्रीमती मधु शर्मा और रंजना दुबे से बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी मुनाली ठाकरे की।
0: मैं श्रीमती मधु शर्मा कुछ पंक्तियां कहना चाह रही हूँ। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। पढ़ी लिखी बेटी रोशन करेगी घर परिवार और देश। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान, शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान।
2: मैं श्रीमती रचना दुबे दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षा ही नारी का गहना है, शिक्षा ही नारी का गहना है, इसे कभी न खोना है। तभी बेटी पढ़ेगी, तभी प्रगति बढ़ेगी। शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा है सुख का सार। बिना शिक्षा के होता है जीवन निराधार।

ये आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसकी फरमाइश की है हमारी सखी शोभा सविता निकिता केशरवानी ने मंगला बिलासपुर से, और इसी गीत को पसंद किया है हमारी सखी रानी नित्या शशि कुशवाहा ने कतियापारा बिलासपुर से। सखियो, आप भी हमें अपने पसंद के गीतों की फरमाइश कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabha@gmail.com पर। तो चलिए आनंद लेते हैं दिल्ली 6 के इस गीत का। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है AR रहमान का, और स्वर है रेखा भारद्वाज, सुजाता मजुमदार और श्रद्धा पंडित के।

0: सखियो अब आइए सुनते हैं ना कहना भी जरूरी है इस विषय पर हमारी सखी राधा शाश्वत तिवारी से ये बात।
1: नमस्कार, मैं राधा शाश्वत तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सखियों, आज हम बात करेंगे हम महिलाओं के सबसे कठिन कार्य किसी भी चीज को ना ना कह पाना। हम महिलाओं को बचपन से ही समझाया जाता है कि सबकी बात मानो, बड़ों का सम्मान करो, किसी को नाराज मत करो, लेकिन क्या हर बात मान लेना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं। कई बार हम दूसरों को बुरा ना लगे इसीलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध कई काम कर लेते हैं, लेकिन याद रखें दूसरों को खुश करने से ज्यादा जरूरी है अपनी खुद की सुरक्षा और खुद का आत्मसम्मान। जहाँ बात आपकी सुरक्षा, सम्मान, समय या इच्छा के खिलाफ हो, वहाँ ना कहना भी जरूरी है। हम महिलाएं खुद तो कई बार न चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे कर लेती हैं जो हमें नहीं करना है या इच्छा नहीं है करने की, हम ना नहीं बोल पाती हैं, साथ ही साथ हम अपने बच्चों के सामने भी वही उदाहरण चाहे अनचाहे प्रस्तुत कर देती हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को भी हमारी सीख देनी चाहिए कि कोई भी कोई गलत तरीके से छुए, डराए या कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो तुरंत ना कहे और किसी भरोसेमंद बड़े को बताए भी। सखियों, ना कहना बदतमीजी नहीं होती, अपनी समय सीमा या अपनी सीमा तय करना होती है। आपकी आवाज़ की कीमत है, आपकी इच्छा की कीमत है और आपके सम्मान और समय की भी कीमत है। तो सखियों, चलिए आज हम खुद से एक वादा करें कि जहाँ जरूरी होगा मैं डरूंगी नहीं, झिझकूंगी नहीं, प्यार और दृढ़ता से ना कहूंगी। धन्यवाद।
0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे ना कहना भी जरूरी है राधा शाश्वत तिवारी से।

सखियों, अब आइए चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे पसंद किया है हमारी सखी ललिमा संध्या गोली सरला ने गुरु अमेरी से। सखियों, आप भी अपने पसंद के गीतों को सुन सकते हैं हमें ईमेल करके। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabhabsp@gmail.com पर। तो चलिए आनंद लेते हैं इनकी पसंद के गीतों का। फिल्म है लुटेरा, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, स्वर है मुनाली ठाकुर का और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी बिलासपुर छत्तीसगढ़, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49, पिन नंबर है 495006। सखियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, पत्र ईमेल @gmail.com पर। सखियों, इन्हीं बातों और गीतों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा भी हम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

कार्यक्रम किसान वाणी हम अनुप्रसारित करेंगे 7:30 पर आकाशवाणी रायपुर से। रात 8 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी मिली। शास्त्रीय संगीत का समय होगा 8:20। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का पहला भाग हम प्रसारित करेंगे 6:20 पर और शेष और अंतिम भाग होगा 7 बजे से। आइए अब कल के प्रसारण पर एक नजर। हमारा प्रसारण आरंभ होता है 5:53 पर। कल 6:30 पर खेती की बात का विषय होगा ज्वार के प्रमुख रोग नियंत्रण। नवविहान में स्मार्ट सिटी मिशन पर बात होगी कल 6:45 पर। इनसे मिलिए भेंटवार्ता का ये कार्यक्रम कल आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे 8:30।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा कल 11 बजे। सुबह 10 बजे सुनेगा गूंजे स्वर गांव की। इसमें हम कल पारंपरिक भोजली गीत सुनेंगे। कलाकार होंगे केजाबाई निर्णयजक, कौशल्याबाई परमेश्वरी, प्रियंका साहू। साथ ही सुनेंगे तीजन बाई द्वारा गाई पंडवानी। प्रसंग होगा पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाना।

कार्यक्रम आपकी पसंद कल होगा सुबह 10:30 पर। गांधी चर्चा होगी कल सुबह 7:20 पर। कार्यक्रम आज सुबह हम प्रसारित करेंगे 7:05 पर।

0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:10 हुए हैं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से और सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। वीवी जी रामजी योजना ला प्रभावी तरीका ले लागू करे बर प्रदेश के आने आने जगह मन मा आज ग्राम सभा के आयोजन करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा 56 नवा सिविल जज मन की नियुक्ति के संग 15 न्यायिक अधिकारी मन के तबादला और पोस्टिंग आदेश जारी करीन। और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम की तैयारी ला परखे बर आज प्रदेश के जम्मू जिला मन मा मॉक ड्रिल करेगी। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जिला प्रभावी तरीका ले लागू करे बर प्रदेश के आने आने जगह मन मा आज ग्राम सभा के आयोजन करेगी। ये दौरान गांव वाले मन ला योजना के प्रावधान के जानकारी देगी। संगे संग चालू वित्त बच्छर मा योजना के तहत होवैया काम के अनुमोदन घलो करेगी। ग्राम सभा मा गांव वाले मन ले गांव के जरूरत प्राथमिकता और संभावित विकास काम के बारे में सुझाव लेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ह पीएससी के माध्यम ले चुने गए 56 नवा सिविल जज मन की नियुक्ति के संगे संग 15 न्यायिक अधिकारी मन के तबादला और पोस्टिंग आदेश जारी करे है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनी श्रीवास्तव डहर ले जारी आने आने आदेश और अधिसूचना मन के तहत हायर जुडिशियल सर्विस और लोअर जुडिशियल सर्विस के कतकुन जज मन के तबादला करेगी है। नवनियुक्त अधिकारी मल्ला 29 अगस्त तक अपन पदस्थापना जगह में कार्यभार ग्रहण करे के निर्देश दे गए है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम की तैयारी ला परखे बर आज प्रदेश के आने आने जिला मन में मॉक ड्रिल करेगी। ये दौरान एसडीआरएफ पुलिस होमगार्ड राजस्व स्वास्थ्य और विद्युत विभाग समेत आने आने टीम हा वास्तविक परिस्थिति के अनुरूप रेस्क्यू ऑपरेशन के अभ्यास करी। अभ्यास के दौरान भारी वर्षा ले डूबे क्षेत्र में फंसे लोगन मल्ला एक टापू में फंसे गांव वाले मल्ला सुरक्षित निकालेगी। एकर बाद मेडिकल टीम डहर ले रेस्क्यू करेगी मनखे मन के स्वास्थ्य के जाँच करेगी। ये कड़ी में गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला

0: के मरवाही स्थित गंगनई जलाशय में जिला स्तरीय मॉकड्रिल करेगी। खेल और युवा कल्याण विभाग ह राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण बर चुने गए खिलाड़ी मन के आखिरी सूची जारी कर दे है। एक संग सूची में खिलाड़ी मन ले दावा आपत्ति मंगाए गए है। इच्छुक खिलाड़ी 23 अगस्त के कार्यालय के बेरा तक विभाग के वेबसाइट sports.cg.gov.in में ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकत है। शराब घोटाला मामला में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम आज धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के सिहावा रोड स्थित घर में छापा मारी। 8 सदस्यीय टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर में दस्तावेज और आने आने जरूरी रिकॉर्ड के जांच करत है। उन्हें दुर्ग में घलो आज ईडी रियल इस्टेट कारोबारी सजल जैन और विश्वास गुप्ता के ठिकाना में छापा मारी। मिले खबर के मुताबिक ईडी की टीम आज बिहनिया दुर्ग के गांधी चौक स्थित कारोबारी सजल जैन के घर और कुछ एक ठिकाना में पहुंची और छापा मारे के कार्यवाही शुरू करी। एकरे अलावा टीम सनिचरी बाजार स्थित श्रीराम हार्डवेयर में रियल इस्टेट कारोबारी विश्वास गुप्ता ले जुड़े ठिकाना में घलो छापा मारी। दोनों कारोबारी मन के दस्तावेज और लेन देन ले जुड़े रिकॉर्ड के जांच घलो करे जावत है। शिक्षा मंत्रालय सूचित करे है कि युवा संगम के 7वां चरण पर ऑनलाइन पंजीकरण के आखिरी तारीख ये महीना के 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय कहने कि ये विस्तार ले देश भर के पात्र युवा मन ला ये अनूठा युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में पंजीकरण करे और भाग ले के एक मौका और मिलही। इंटर्न डॉक्टर मन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। इंटर्न डॉक्टर मन स्टाइपेंड पर बढ़ोतरी समेत आने आने मांग लेके हड़ताल में रही से स्वास्थ्य मंत्री सोशल मीडिया में जानकारी दे है कि इंटर्न डॉक्टर मन सरकार ऊपर भरोसा जतावत अपन आंदोलन खत्म करे के फैसला ले है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। गृह विभाग प्रदेश में बढ़त साइबर अपराध ला ध्यान में राखत स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के गठन करे है। ये सेंटर राज्य स्तर में साइबर क्राइम ले जुड़े जम्मो गतिविधि मन बर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट SPOC के रूप में काम करही। ये संबंध में राज्य शासन कोती ले जारी आदेश के मुताबिक वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक के पद में पदस्थ IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल और उप पुलिस महानिरीक्षक के पद में पदस्थ IPS गिरिजा शंकर जायसवाल के स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में नवा पदस्थापना करी गई है। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन डहर ले आज रेडियो श्रोता दिवस मनाएगी। रायपुर के वृंदावन हॉल में राखे गए कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के संगे संग आने आने राज्य में ले श्रोता मन शामिल हुए। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कार्यक्रम में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र मोदी माई पहुना के रूप में शामिल हुए। ये दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम मन की प्रस्तुति देगी। उन्हें छत्तीसगढ़ श्रोता मंच कोतिले भिलाई में रखे गए 2 दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के दूसरे दिन आज भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम के आयोजन करेगी। सूरजपुर जिला के प्रेमनगर पुलिस एक ठीक गाड़ी ले 88 किलो ले ज्यादा के गांजा बरामद करी है। ये मामला में पुलिस एक जिन आरोपी गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा की कीमत करीबन 44 लाख रूपया बताये गये है। पूछताछ में आरोपी बताएं कि गांजा रायगढ़ ले होत बचरापोड़ी ले जाया जावत रही से आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज दे गए है। उन्हें गरियाबंद जिला के देवभोग ले पुलिस तलाशी के दौरान मेटाडोर के टायर में लुकाए गए 151 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है। जब्त गांजा की कीमत 75 लाख रूपया ले ज्यादा के बताये गये है। पुलिस ये मामला में 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। कटघोरा में 50

0: 50 करोड़ रुपया के एक ठगी के मामला में मुख्य आरोपी ला पकड़े बर ट्रेन के बजाय फ्लाइट ले दिल्ली जाए के आरोप में टीआई समेत 8 जिन पुलिस कर्मी मला निलंबित कर दे गए है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक है एला अनुशासनहीनता माने हैं। खबर के मुताबिक कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वाहन एजेंसी संचालक ले करीबन 50 करोड़ रुपया के ठगी हुई रही। ये मामला के आरोपी के दिल्ली में होए के खबर मिलते कटघोरा थाना प्रभारी के अगुवाई में पुलिस के टीम फ्लाइट ले दिल्ली पर रवाना हुई रही। इसी बीच आबकारी आयुक्त मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंगला एंटी करप्शन ब्यूरो ACB में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिए। उन्हें दो जिन आने आबकारी उप निरीक्षक ला शराब के ज्यादा कीमत में बिक्री और तय सीमा ले ज्यादा शराब बेचे के मामला में शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालय मन में चालू शैक्षणिक सत्र के BSc कृषि ऑनर्स स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर चलत ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत आज ले कृषि महाविद्यालय रायपुर में दस्तावेज मन के परीक्षण करे जावत है। दस्तावेज मन के परीक्षण 22 अगस्त तक बिहनी 8 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। चुने गए अभ्यर्थी मन ला उहां आवंटित प्रोविजनल सीट सुरक्षित करे बर 23 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा करना होही। मौसम विभाग अवैया 3-4 दिन तक प्रदेश में भारी वर्षा के गतिविधि में कमी आए के संभावना जताई है। एक हल्ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होही, फिर ये दौरान प्रदेश की ज्यादातर जगह मन में हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ला बताई है कि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाका में अवैया 4 दिन के दौरान कोनो कोनो जगह में भारी वर्षा होए के आसार है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर VVG रामजी योजना ला प्रभावी तरीका ले लागू करे पर प्रदेश के आने आने जगह मन में आज ग्राम सभा के आयोजन करेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है 56 नवा सिविल जज मन की नियुक्ति के संग 15 न्यायिक अधिकारी मन के तबादला और पोस्टिंग आदेश जारी करी और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम की तैयारी ला परखे पर आज प्रदेश के जम्मू जिला मन में मॉक ड्रिल करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम सुन रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में समय हुए हैं 6:20 और आज है श्रोता दिवस। हम सब मिलकर के श्रोता दिवस मना रहे हैं और हम सबके साथ के लिए ये गीत पहला आप तक हम पहुंचा रहे हैं।

जी हाँ, हमारा आपका साथ यूं ही बना रहेगा, यह हम जानते हैं, क्योंकि आज है श्रोता दिवस। तो श्रोता दिवस की बहुत सारी बधाई, और इस बधाई के सिलसिले के साथ हम आपको आपके पसंद के गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम है ईमेल करें गीत सुने, और हमारे साथ आज हम शामिल कर रहे हैं हमारे तकनीकी सहयोगी कौशिक जी को। तो गौरीशंकर कौशिक जी हमारे साथ हैं, वो आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उसके पहले हम इस गीत के लिए जो हमने आपकी फरमाइशें थी वो नाम हम आपको बता दें कि नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश कुमारी गुजरात, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, तुलसी, दिशा गोस्वामी हैं। महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं मुसरत जहां नाज, तऊफ, रहरत, रफ़ियत और नाज, नाजिया, नूर नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, नंदा बोखड़े, हनुमान, उत्तम जमदाड़े और प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत सिंह जोड़ा, करणवीर, परनदीप, कुलदीप और दमन, एनक, अभिजोत हमें बठिंडा पंजाब से ये ईमेल करते हैं। अगला ईमेल हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो है भोपालगढ़ राजस्थान का, धर्म छिंपा, कमल छिंपा, पूजा परिहार का। और स्क्रॉल करके अगला मेल जो हम देख पा रहे हैं वो ये है रायगढ़ बिहार का, उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल, उमा का। और हरिद्वार लक्सर से हमें ये ईमेल करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मोहराज जहां,

और ये है अड़ार नानघान से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से है कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक गुप्ता, अंकु, राघव गुप्ता। ये तमाम फरमाइशें हम तक पहुंची हैं इस फिल्म के लिए जिसका नाम था प्यासा सावन। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अगले गीत में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लेकिन वो गीत कौन सा है वो बता रहे हैं हमारे तकनीकी सहयोग।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अगले गीत में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लेकिन वो गीत कौन सा है वो बता रहे हैं हमारे तकनीकी सहयोगी और आज की इस सभा के हमारे साथी गौरी शंकर कौशिक जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज श्रोता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा सुनील जी ने मुझे कहा कि आप अपनी पसंद का बताएं, तो मैं दोस्ताना फिल्म का सलामत रहे दोस्ताना हमारा ये सुनना चाहूंगा।
0: देखिए, सुनते हैं हम और आप अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हैं आज के खास दिन यानी कि श्रोता दिवस पर।

0: श्रोताओं, दोस्ताना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और फरमाइशें थी इन तमाम साथियों की, यानी कि गौरीशंकर कौशिक जी की फरमाइश के साथ ये तमाम साथी भी शामिल है जिन्होंने हमें ईमेल किए हैं। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, आदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। ये हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रैन, अब्दुल सलाम रैन। पीपरलोड सरगांव से है दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। पहंदा पलारी से है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। और ये खत है खमरिया का साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार का। अगला ईमेल हम जो पढ़ पा रहे हैं वो ये है, बालौद का है, दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। और स्क्रोल करके अगला ईमेल हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ा वो ये है, नेपानगर से प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला बेन, राजेंद्र शाह। और दत्रेंगी भाटापारा का ये ईमेल हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा का है। धाड़ी नांदोड़ महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम। और अगला ईमेल टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब का है, गगनदीप थांदी, तृप्तिया, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी और वामिका और वाणी थांदी। और हम मना रहे हैं श्रोता दिवस कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के माध्यम से। और अगले फरमाइश जो ईमेल से हम तक पहुंची है वो हमारे साथी गौरीशंकर जी आपको बता रहे हैं।
1: दोस्तों, अगला फरमाइश जो आया है हमारे पास में फिल्म अमर अकबर एंथोनी से है, जिसे गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता जी ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत के बोल हैं, हमको तुमसे हो गया है प्यार।

0: ये हमारे प्यार की गाड़ी सालों साल यूं ही साथ मिलकर बढ़ती रहेगी। और इस गीत के लिए जिन्होंने हम तक अपना साथ भेजा है ईमेल के माध्यम से, वो ये हैं। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवांडकर, सरिता, प्रिंस, एकांश गवांडकर और ऋतिक मल्होत्रा हैं, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर और अमनदीप हैं हमारे साथ मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अंबागढ़ी चौकी से हैं रजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगला जो ईमेल हमें दिखाई पड़ रहा है वो है छत्रपति संभाजी नगर का है, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, शीतल राजेश। पोटिया कला दुर्ग से है संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू। लक्षनपुर से है रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से हैं वसीउल्ला अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय। और नरवेल्र महाराष्ट्र से हैं पीएस नुहारकर, निर्मला, विशाल नुहारकर। और मगरलोट से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हिमांशु, हेयांश चंदन हैं। और कुंभार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दड़े। कर्मा चौक लोहारी डीक जिला कवर्धा का ये ईमेल हमें दिखाई पड़ रहा है, अशोक कुमार साहू का, लीलेश्वरी निशांत साहू। और ये हैं रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और चिरमिरी कुरासिया कॉलरी का ईमेल हमें दिखाई पड़ रहा है, यह है इंद्रमान सिंह का, इनके साथ हैं अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। हम सबके नाम अब तक पढ़ रहे हैं और हम आज के दिन तो सबको शामिल करना चाहते हैं लेकिन समय का तकाजा है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगला ईमेल जो हमें दिखाई पड़ा मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा। सरगांव से है राजेश वर्मा, हिरुमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बित्ता, नीलम बित्ता। और ये हैं यवतमाल से हैं सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी और मनहर। और इन नामों के साथ विराम लेते हैं और मिली जुली फरमाइश का अगला जो गीत है वो हमें बता रहे हैं आज के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के हमारे साथी गौरी शंकर भाई।
1: दोस्तों लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसको संगीत दिया है आरटी बर्मन।
0: तो गौरी शंकर जी के साथ हम ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे आपके साथ का यह कार्यक्रम जारी रहेगा 7 बजे से पुनः, लेकिन फिलहाल हमारी घड़ी कह रही है 6:45 हो गया है। तो हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब जुड़ेंगे आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचारों के लिए।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश में 56 नए सिविल जजों की पदस्थापना के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए। ईडी ने आज धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के निवास के साथ ही दुर्ग में 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापा मारा। और मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, राजस्व, स्वास्थ्य और विद्युत विभाग सहित विभिन्न टीमों ने वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान भारी बारिश से जलमग्न क्षेत्र में फंसे लोगों और एक टापू पर फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया। इस बीच भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर में भी औद्योगिक और रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज केमिकल डिजास्टर डेमोन्स्ट्रेशन और संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान संयंत्र में जहरीली गैस अथवा रासायनिक पदार्थ के रिसाव की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। इसके बाद तत्काल अलार्म सक्रिय करने, लीकेज सीलिंग वॉल बंद करने और पैचिंग तकनीक के जरिए रिसाव को नियंत्रित करने का अभ्यास किया गया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को योजना के प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही चालू वित्त वर्ष में योजना के तहत होने वाले कार्यों का अनुमोदन भी किया गया। ग्राम सभा में ग्रामीणों से गांव की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और संभावित विकास कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त किए गए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी के जरिए चयनित 56 नए सिविल जजों की नियुक्ति के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत हायर जुडिशियल सर्विस और लोअर जुडिशियल सर्विस के कई जजों के तबादले किए गए हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को 29 अगस्त तक अपनी पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। एंटन डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी है। एंटन डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि एंटन डॉक्टरों ने सरकार पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के सिहावा रोड स्थित घर पर छापा मारा। 8 सदस्यीय टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर में दस्तावेजों और अन्य जरूरी रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वहीं दुर्ग में भी आज ईडी ने रियल एस्टेट कारोबारी सजल जैन और विश्वास गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा है। दोनों कारोबारियों के दस्तावेज और लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। खेल और युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतरिम सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही सूची पर खिलाड़ियों से दावा आपत्ति आमंत्रित की है। इच्छुक खिलाड़ी 23 अगस्त तक कार्यालयीन समय तक विभाग की वेबसाइट sports.cg.gov.in पर ऑनलाइन दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में चलाए जा रहे बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत बीते 2 दिनों में खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने मिठाई दुकानों, होटल, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान टीम ने दुर्ग के बैकुंठ धाम स्थित फूड प्रोडक्ट बनाने

0: वाली एक फैक्ट्री को सील किया। वहीं बिलासपुर में मिठाई की एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया। इसी तरह बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, रायपुर और कोंडागांव सहित अन्य जिलों में भी कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। विभाग ने लोगों से अपील की है कि रक्षाबंधन पर मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, निर्माण तिथि, स्वच्छता और प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें। प्रदेश में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्र छात्राओं की जानकारी अब hmstribal.cg.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आम नागरिक पोर्टल के विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट मेनू पर क्लिक कर विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा आज रेडियो श्रोता दिवस मनाया गया। रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से पहुंचे श्रोता शामिल हुए। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन के प्रांतीय अध्यक्ष मोहनलाल देवांगन ने बताया कि कार्यक्रम में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के दूसरे दिन आज भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह विभाग ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया है। यह सेंटर राज्य स्तर पर साइबर क्राइम को से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट SPOC के रूप में काम करेगा। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कोरबा के कटघोरा स्थित शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। वहीं धमतरी जिले में 7 महाविद्यालय में भी नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटघोरा में 50 करोड़ रुपए की एक ठगी के मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रेन के बजाय फ्लाइट से दिल्ली जाने के आरोप में TI सहित 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने इसे अनुशासनहीनता माना है। गौरतलब है कि कटघोरा थाने के अंतर्गत एक वाहन एजेंसी संचालक से करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर कटघोरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इस बीच आबकारी आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB में मामला दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया है। वहीं 2 अन्य आबकारी उप निरीक्षकों को शराब की ज्यादा कीमत पर बिक्री और तय सीमा से ज्यादा शराब बेचने के मामले में शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सूरजपुर जिले की प्रेमनगर पुलिस ने एक वाहन से 88 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई गई है। वहीं गरियाबंद जिले के देवभोग से पुलिस ने तलाशी के दौरान मेटाडोर के टायरों में छिपाया गया 151 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 75 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इससे अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाड़ी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आगामी 4 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के आसार हैं।
1: आज से लेके आगामी 3-4 दिन तक प्रदेश में ये भारी वर्षा गतिविधि में कमी आने की संभावना है, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा का गतिविधि जो है वो अधिकांश स्थानों पर आगामी 5-6 दिन तक भी रहने की संभावना है। और उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर ये मध्यम से भारी वर्षा होने के भी संभावना है आगामी 4 दिन तक। अधिकतम तापमान में आगामी 2 दिन में लगभग 1-3 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है और उसके पश्चात कोई विशेष परिवर्तन होने की तो संभावना नहीं है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि इस माह की 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। जनजातीय कारीगरों स्वसहायता समूह

वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को मंच प्रदान करने के लिए कल 21 अगस्त को धमतरी के आजीविका महाविद्यालय में जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 21 अगस्त को गौरेला के शासकीय आईटीआई परिसर गौरेला में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश में 56 नए सिविल जजों की पदस्थापना के साथ ही 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए। ईडी ने आज धमतरी में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के निवास के साथ ही दुर्ग में 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापा मारा और मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार हमने आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित किए। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजे हैं, ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

0: कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में पुनः आपका स्वागत। मैं हूँ सुनील चिपड़े
1: और मैं हूँ गौरी शंकर कौशिक। आपका ब्रेक के बाद पुनः स्वागत।
0: तो श्रोताओं की अगली पसंद क्या है वो बता रहे हैं गौरी शंकर कौशिक जी।
1: दोस्तों अगली पसंद है फिल्म जावाज से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है इसे कल्याण जी आनंद जी ने।

0: ज्योति रानी गुरमीत कौर मनु और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और नमित आहूजा धनौरी तेलीवाल से हैं निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया आपके साथ हैं और आयान भी हैं तो ये तमाम श्रोता थे जो इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेज रहे थे अगले गीत की बातचीत जो हमें बता रहे हैं कि श्रोताओं ने कौन सा गीत पसंद किया है वो हमारे साथी गौरी शंकर कौशिक जी
1: दोस्तों अगला गीत फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से श्रोताओं ने सुनवाने का फरमाइश भेजा है जिसे गाया है आशा भोसले और अनवर ने आइए सुनते हैं

आशा भोसले और अनवर के युगल स्वरों में ये गीत आप तक पहुंचा और जो फरमाइशें हम तक आई थी वो ये हैं। सत्येंद्र कुमार चंचोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया उत्तर प्रदेश जालौन से हमें भेजते हैं। राजकोट से है जूली जगदीश और प्राची। ये हैं हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू हैं। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीन बानो, एजिया नायाब और लड्डू। और दीपक मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक हैं सुनील पाठक के साथ, जगराव से हैं। और हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका हैं। स्वर्ण सिंह गील, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुल्लाल और अविरजात हैं ठाकुरवाला।

0: लूतरा खमरिया से है अकरम अमीन, अर्श अतिका, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री और रमेश गोड, मोहम्मद शादाब खत्री। रिंगनी से है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद, चंद्रकांता और इनके साथ हैं बागपत उत्तर प्रदेश का। एक ईमेल दिखाई पड़ रहा है संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया का है। और लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज हैं। और डबरीपारा कोरबा तीव्रता से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मण। और ये हैं दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। पुतकी कला कवर्धा से है राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर और इनका परिवार। महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नजिया शेख और साजिद शाहिद। अगला गीत हम आपको सुनाएं और उसकी जानकारी जो फरमाइश हम तक पहुंची है वो दे रहे हैं हमारे साथी गौरी शंकर कौशिक।
1: दोस्तों अगला फरमाइश आया है लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है इसे शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है असली नकली।

0: ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम आप आकाशवाणी बिलासपुर से सुन रहे हैं और आज हम यानी कि गौरीशंकर कौशिक और सुनील चिपड़े आपके लिए कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। इस गीत के लिए जो फरमाइशें हम तक पहुंची थी वो हैं गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र रौनक सेन है, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश संध्या, कीर्ति डिकेश, वासु डार्ली, पूर्वेश साहू हैं रसेड़ा कलतरा से, इंदौर से हैं नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, बागबहरा से है बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन हैं, पंडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे हैं, और उदयपुर सरगुजा से हैं जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सुमार साय, कमलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामन, ऐश्वर्या पैकरा हैं, और बाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से हैं और प्रभा जाटव, डॉली कबीर जाटव, देवशंकर जामदार, भूतकचार लोरमी से हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम धनराज मरकाम। आइए, आप सबकी पसंद पर हमने ये गीत तो सुना और अगली जो फरमाइश है उसके जो ईमेल हम तक हैं उसे इसी गीत के साथ लगातार पढ़ते हैं और फिर आपको गीत सुनवाएंगे और गीत बताएंगे हमारे साथ ही गौरीशंकर जी। लेकिन पहले आपके ईमेल। उदयबान पाल सिंह, जय सिंह, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांशी पाल हैं बुंदेलखंड से हैं, अकोला से सुशीला देवी, मंदूरकर सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता ये हैं, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, पूरी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम, यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन हैं, और पथरिया भरेव्या से है चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमी सिंगरौल, नेहा वान्या सिंगरौल, पुरानी भिलाई तीन चरोदा से हैं, नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जीशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, और ये हैं राहुल जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल अंबाला हरियाणा से। तो इन सब ने जो पसंद किया है वो बता रहे हैं गौरीशंकर।
1: दोस्तों, आपने जो गीत पसंद किया है वो है फिल्म सत्ते पे सत्ता से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आर डी बर्मन ने। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं।
0: जी हाँ, आइए सुनते हैं और हमारी आपकी जिंदगी का ये गीत यूं ही बना रहे, रेडियो का साथ बना रहे और जिंदगी यूं ही मिलके बिताते रहें।

0: हमारा और आपका साथ रेडियो के साथ यूं ही बना रहेगा। अगले गीत की जो फरमाइश है वो बता रहे हैं गौरी शंकर कौशिक।
1: अगले गीत की फरमाइश आई है दोस्तों फिल्म हमसे, जिसे गाया है सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: जी हाँ कौशिक जी, हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनेंगे, लेकिन पहले कुछ ईमेल के नाम जो हम तक इस हम पिक्चर के लिए आए हैं वो ये हैं। नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत हैं। डोंगरगांव से है राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजबीये। कुरवाली से हैं अनिल कुमार, माया देवी, राहुल। बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू। ये हैं कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह और उषा ऋषभ सिंह, चेतन भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, अनंता भगत मस्तानपुर से हैं, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, और आप सबकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंच रहा है।
2: चिक बम बम बम चिक बम।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमारी आपकी बेकरारी एक दूसरे के प्रति हमेशा हमेशा से बनी हुई है, बनी रहेगी, हम जानते हैं, क्योंकि रेडियो और हमारा जो लगाव है वो ताउम्र का है। तो बस यूं ही दोस्ती बनाए रखिएगा। और ये गुजारिश कर रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर के स्टूडियो से गौरी शंकर कौशिक और आपका मित्र सुनील चिपड़े। तो आज इस खास दिन यानी कि श्रोता दिवस के दिन मैं सुनील चिपड़े
1: और मैं गौरी शंकर कौशिक
0: आपको शुभकामनाएं देते हैं,
1: श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी हाँ, और इस कार्यक्रम से अनुमति चाहते हैं। नमस्ते।

0: किसान वाणी सुनैया जम्मो संगवारी मन ल विनीता
1: और सतीश के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। दीदी किसान संगी मन अभी बड़ खुश हवे, काबर के अभी सावन के महीना चला थे और जैसन वर्षा चाही तैसन वर्षा मिला थे मल्ला।
0: खुशी के तो बातें आए सतीश भाई, अब जैसे लड़का मन महतारी देख के खुश हो जाते हैं नी, तो इसने किसान मन घला अपन खेती बाड़ी और फसल ला देख के बड़ खुश होते।
1: वाह, बड़ा भाव वाला चीज कहा था दीदी।
0: हाँ।
1: अब किसान संगी मन के धान पान के रोपाई तो लगभग सिरा गया है।
0: हाँ।
1: कोनोच कोनो मन बचे हुई वो संगी मन धरा रपटी अपन काम बुतला पूरा करत है।
0: पूरा करत है सतीश, धान हो या कोनो भी फसल लगाए के बाद ना बात आते ओकर खातू माटी और कीटनाशक,
1: कीड़ा मकोड़ा और रोग राई के बचाव करे के आज जन कीटनाशक आ गया है, किसान भाई मन एकर उचित चुनाव करके ही वाला कीटनाशक के छिड़काव करे।
0: पानी बानी के कीटनाशक आते तो ओमा जन गुणवत्ता वाले है तो उन्हें हम उपयोग करन। देख ऐसे जैविक कीटनाशक के बात है तो जैविक कीटनाशक जिला बायो पेस्टिसाइड घलो कहे जाते
1: हाँ।
0: एला प्राकृतिक स्रोत जिसे पौधा है छोटे छोटे जीव है और खनिज ले बनाए जाते है ना। प्राकृतिक रूप ले बने के कारण का है ये पर्यावरण माटी और फसल पर बहुत सुरक्षित रहते सतीश भाई।
1: हाँ दीदी, प्रमुख जैविक कीटनाशक के बात करन तो नीम के तेल है, नीमास्त्र है और ट्राइकोडर्मा एमा शामिल है, जौन हा फसल ला कीड़ा मकोड़ा और रोग राई ले बचात। बिल्कुल दीदी, बता देवन दीदी, प्रमुख जैविक कीटनाशक के बात करन तो नीम के तेल, नीमास्त्र और ट्राइकोडर्मा शामिल है, जैसे जौन फसल ला कीड़ा मकोड़ा और रोग राई ले बचाते। तो दीदी जैविक कीटनाशक मा नीम आधारित उत्पाद हवे, ये मन नीम के तेल या नीम के पत्ता के घोल ले बनाए जाते, एखर ले माहू सफेद मक्खी और इल्ली हा दूरिया थे।
0: बिल्कुल सही कहे सतीश भाई, वही किस्म ले का है नीमास्त्र घलो बने प्रभावी होते है ना, माने एक प्रभावी कीटनाशक के रूप में वाला माने जाते। एक आए नीम के पाना और गाय के गोबर और गौमूत्र ले बनते काबर की और ट्राइकोडर्मा घलो, तो ये काय फफूंद नाशक के रूप में है तो माटी और बीज के उपचार बर यह बहुत काम आते। तो ए ढंग ले कहन तो अलग अलग प्रकार ले बने कीटनाशक जो है किसान भाई मन उपयोग कर सकते है ना।
1: और दीदी कोनो भी जिनिस हो बने ढंग ले ओकर निर्माण होते तो ओमा गुण अच्छा होते और ओकर परिणाम घलोक सही और सुघर प्रभावी होते।
0: जैसे नीम है और लहसुन है आए ना, तो नीम और लहसुन के असरदार जैविक एक कीटनाशक बनाए जा सकते। एकर बर बस ऐसे करना है 200 ग्राम

0: ताजा नीम के पाना और 100 ग्राम लहसुन लेना है ना। और दोनों ल बराबर ढंग ले बने पीस ले, ओकर पेस्ट बना ले। तहाल 1-2 लीटर पानी में बने अच्छा कमती आँच में गरम करके और 15-20 मिनट ओला अच्छा उबाल दे, तहाल ओला छान दे।
1: और छानत बखत दीदी हमला ये ध्यान देना चाहिए कि सूती कपड़ा रहे और बारीक या बारीक छन्नी वाला होना चाहिए।
0: हाँ, और सही ढंग ले बने जैविक कीटनाशक लाना सही विधि ले, घलो ओकर छिड़काव बहुत जरूरी है, ओकर उपयोग सही विधि ले करना बहुत जरूरी होते, तभी पौधा में असर होते
1: असर करते,
0: है
1: सही
0: ना।
1: बात कहा था। तैयार घोल ला अपन जरूरत के मुताबिक सामान्य पानी मिला के ओकर मात्रा ला हम और बढ़ा सकथन एकर अपन
0: हाँ
1: खेत के मुताबिक।
0: हाँ और छिड़काव करत बेखत कुछ बात के ध्यान रखना चाहिए, जिसे छिड़काव जो है कीटनाशी के सुबह या संझा बेरा है ना, ये करना चाहिए। काबर तेज घाम में या माने मंझनिया बेरा एकर छिड़काव नहीं करना चाहिए।
1: बहुत सुघर बात बता सकती दीदी। वो कतको विशेषज्ञ मन बताते कि छिड़काव करे के पहली खेत या पौधा में हल्का हल्का उमा सिंचाई कर देना चाहिए, एकर ले असर है अच्छा होते परिणाम बने आते ऐसे की थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहे। कीड़ा मकोड़ा के ज्यादा प्रकोप हो गए तो एला का है 7 से 15 दिन तक खर अंतराल में खर दोबारा एक छिड़काव करे जा
1: हाँ
0: सकते
1: हाँ कई
0: हैं।
1: बार कहा ज्यादा कीड़ा पनप जैसे ते के बार मनी हो तो दोबारा 7 से 15 दिन के अंतराल लेके फिर छिड़का देना चाहिए ला, छिड़काव करना चाहिए। दीदी एकर छिड़काव में कोनो किस्म के सावधानी है कि जैविक कीटनाशक के घोल ला हमेशा साफ कपड़ा और छन्नी में बारीक उमा छानना चाहिए। और छानना एक ए नाम से चाहिए सावधानी नाम से रखन। कभी कभी कहा होते कि हम घोल बनाए हैं कीटनाशक बनाए हैं वो कीटनाशक में कई कंकड़ आए थे वो कंकड़ है नोजल में जाके बैठ जाए तो आगे जो है स्प्रे नहीं हो पावे अनावश्यक हम परेशान होते। और जैविक कीटनाशक भले हरे तब बोले हमला जैसे रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव करत वक्त हम जेना
0: सावधानी
1: सावधानी
0: रखन
1: रखथन उही ढंग से हमला हमर हाथ पांव ला ढकना चाहिए मुहूल मास्क लगाना चाहिए हाथ में दस्ताना लगाना चाहिए।
0: और
1: और
0: लइका और सियान और घर में जोन पालतू जोन जानवर
1: जानवर
0: रखे
1: है
0: हैं ये सब ले दूरिया रखना चाहिए है
1: रखना
0: ना,
1: चाहिए।
0: ते पाए के बहुत सावधानी रखे की जरूरत पड़ती।
1: हाँ कीटनाशक है कीटनाशक हो गए तो कर बचाव रखना चाहिए।
0: देख सकती ऐसे है जैविक कीटनाशक जो है प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधा है और छोटे छोटे जीव माने सूक्ष्म जीव ले बनते है ना, ते पाए के यह पर्यावरण पर अच्छा होते उचित होते और माटी के उपजाऊ जो है वह बढ़ते ओकर उर्वरता बढ़ कोनो किस्म के नुकसान नहीं हो माटी ला।
1: एमा पैदा हो या साग सब्जी मन घलोक फल फूल और जहरीला नहीं हुए
0: हाँ
1: स्वास्थ्य पर बहुत सुग्घर और सुरक्षित थे।
0: बिल्कुल
1: एकर संगे संग पर्यावरण की सुरक्षा घलोक होते सुरक्षा ऐसे ही कि एमा हवा पानी माटी कुछ प्रदूषित नहीं हुए ये है।
0: देख ऐसे ने मित्र कीट रहते हैं तो रासायनिक कीटनाशक डालवे तो मित्र कीट मन घला मर
1: मर
0: जाते
1: जाते
0: तो
1: हाँ
0: उखर मन के रक्षा होते हैं है ना। और रासायनिक दवाई जैसे कतकुन जीव मन ला एखर छिड़काव ले काहे कतकुन प्रकार के हानि होते तो वो नहीं हुआ।
1: और सुरक्षित उपज घलोक प्राप्त होते। अभी कहूँ छिड़काव करा था ना सब्जी उब्जी लो में सब्जी या फल है बोला उतारना है माने पेड़ से तोड़ना है तो तोड़ सकथन ज्यादा में कोई अवशेष नहीं रहा है।
0: नहीं रहा है
1: और एक माटी के जो सेहत घलोक बने रही थे काबर की छिड़काव के बाद भी सूक्ष्म जीव मन जीवित रही थे उसमें कोनो किस्म के जीवाणु मन में नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और उपजाऊ क्षमता घलोक बढ़ाते।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: जैविक
0: कहे।
1: कीटनाशक ह कम लागत में तैयार हो जाते और आर्थिक में बचत घलोक होती तो ये किस्म ले किसान मन भर ये बहुत सुघर और घरे में बनाए वाला एक घरोधिया उपाय कहना चाहिए।
0: और देखा ये तो अभी हम गोट बात करें ना अभी जैविक कीटनाशी के बारे में। और सतीश भाई अब पारी है आज की शाला क्रम में जानकारी के, इमा उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण विधि ये संबंध में जानकारी लेथन बतावत है विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय भाटापारा। और गोट बात करें हमारे सतीश भाई तो उनला सुनथन।
1: किसान संगवारी हो राम राम। खेती किसानी के संग किसान संगी मन ह घर म बाड़ी बखरी और बाग बागवानी घलोक लगाथे। फिर सही विधि ले तकनीकी विधि ले हम रख रखाव करथन तो हमर उत्पादन सही आते। और कहूँ हमन एला वैज्ञानिक पद्धति ले मन जोन बताते तेकर अनुसार यदि हम इला देख रेख नहीं करथन तो एकर उत्पादन में कमी हो सकते। तो आवा जानन हमन एकर सही संरक्षण और एकर विधि विषय हावय उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण विधि। विशेषज्ञ है डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय कृषि महाविद्यालय भाटापारा। उपाध्याय जी राम राम स्वागत है हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आप मन के।
2: जी नमस्कार
1: डॉक्टर साहब सबले पहले हम आप मन से पहले ये जानना चाहो कि उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण का होते एकर महत्ता का कहवे।
2: बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसे नवजात शिशु होते ओकर वृद्धि विकास बर माता बहुत ध्यान देते पिता मन ध्यान देते डॉक्टर मन भी ओकर ध्यान देते वैसने जिन हमर उद्यानिकी फसल के जिन साग भाजी सब्जी होते ओकर भी जे नवजात पौधा मन तैयार करथन जैसे टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है, फूलगोभी, पत्ता गोभी है या अन्य सब्जी है, तो ओकर जिन पौधा है ओकर अच्छा और स्वास्थ्य पौधा तैयार करना जेन है पहला हमर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होते। और पौधशाला में स्वस्थ, रोग मुक्त, मजबूत और समान आकार के पौधा तैयार करे जाते। ओकर बाद जब ये हमन खेत में लगाथन तब ओकर

0: समान बढ़वार होते त अंत में एकर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर मिलते।
1: अच्छा अच्छा, आगो हम ये जानना चाहबो कि उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण करना है तो स्थान के चयन हम कैसे ढंग से कर सकते।
0: स्थान के चयन बहुत महत्वपूर्ण होते, काबर की समतल स्थान, ऊंचा और जल निकास की अच्छी व्यवस्था वाला जिन स्थान है वैसा स्थान में अगर किसान भाई मन अपन पौधशाला निर्माण करते तब जल भराव के जो समस्या होते वो नहीं हुए। दूसरा है वैसा स्थान में धूप बढ़िया मिलना चाहिए, छोटे पौधा जिन होते अत्यधिक तेज धूप और अत्यधिक गर्मी या तेज हवा इस सब की व्यवस्था जिन होते, ज्यादा हवा होए से भी पौधा गिर जाते नुकसान हो जाते, तो खेत में सिंचाई के स्रोत के नजदीक होए ताकि देखभाल करना आसान होए ऐसे जगह के चयन हमला करना चाहिए। विशेष रूप से जिन पशु मन होते ओकर से पहुंच से दूर रहे, कीट रोग से ज्यादा प्रभावित मत हो, ये ध्यान हमला रखना चाहिए।
1: बहुत अच्छा बतावा था, काबर की कोई भी काम तो करत हैं लेकिन ओकर कैसन जगह में अच्छा हुई कैसन जगह में उत्पादन सही नहीं हुई एकरो भी हमला ध्यान रखे पड़ते। अब ये जानबो कि पौधशाला के आकार कतका होना चाहिए, ओकर आकार बताते हो कैसन कैसन नमूना ढंग से होना चाहिए।
0: ऐसे है आकार तो किसान कतक क्षेत्र में वो फसल लगाना चाहते ओकर ऊपर निर्भर करते
1: जी,
0: फिर भी एक सामान्य बात करबो तो क्षेत्रफल के आधार पर ही तय होते। छोटे पौधशाला जिन होते छोटे किसान पर वह पर्याप्त हो, जबकि व्यवसायिक उत्पादन जिन किसान करते ओकर पर बड़े पौधशाला की आवश्यकता होते। पौधशाला में केवल पौध तैयार करे के जगह ही भर नहीं बल्कि ओकर बीज उपचार करे के व्यवस्था, बुआई सिंचाई, पौधों के देखभाल की व्यवस्था, पौधों को खेत में लगाए बर जिन सख्त करे के जिन स्थिति होते जिन हमन हार्डनिंग कहते कहथन ओकर पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। तो स्थान के तो बहुत बड़ा विशेषता है कि भाई पर्याप्त स्थान होना चाहिए किसान भाई के पास।
1: अच्छा, मतलब जैसे अपन जतका का नकार है जतका खेत है ओकर अनुसार से हम वाला उपजा सकते।
0: हाँ हाँ
1: जी, बहुत बढ़िया बताता हूँ। आगो ये जानबो कि पौधशाला के प्रमुख विशेषता का होना चाहिए, का गुण में होना चाहिए, एला बताते हमारे किसान संगवारी मल्ला।
0: पौधशाला या जिन तरह किसान तैयार करते वैसे स्थान के महत्व है, जैसे जल निकासी व्यवस्था हो, स्वच्छ और रोग मुक्त जिन मिट्टी है ओकर उपयोग करे किसान भाई है, कहीं से भी माटी उठा के झन ले आवे। दूसरा गोबर खाद बढ़िया सड़े वाला इस्तेमाल करे, तो मतलब वो स्वच्छ और रोग मुक्त होना चाहिए माटी। दूसरा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, पर्याप्त प्रकाश और मात्रा में हुआ है वो जगह में, कीट और रोग से मुक्त वाली स्थिति वहाँ होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ा थे तो छाया जाल या शेड नेट की थे आजकल बहुत प्रचलन में है, ओकर उपयोग किसान कर सकत है। लगाए के पहली किसान पौधा ला पर्याप्त हार्डनिंग करे, कड़ा करे ओला, तब वो खेत में ओला स्थापित करना चाहिए।
1: शेड नेट जी के बात करत हो डॉक्टर साहब, तो ये शेड नेट मान्य बाजार में उपलब्ध हुई किसान मल्ला।
0: हाँ हाँ, बाजार में मिल जाते, बस एक बार ध्यान रखना है बिल्डिंग या घर ढके वाला जिन हरियर हरियर नेट आते थे नो है वो अलग होते।
1: अच्छा,
0: और ये जिन आते है यूवी अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड वाला होते ये नेट अलग होते, दोनों में बहुत अंतर होते, बस दिखे में एक जैसे दिखते। किसान ला थोड़ा चतुरा ढंग से पूछ के लेना चाहिए।
1: काबर की वो पौध संरक्षण के लिए तो कृषि उद्देश्य से अलग मिलते है, वो छाया के लिए अलग
0: अलग मिलते।
1: अच्छा बता दे, बहुत तकनीकी चीज है कहना चाहिए। कहूं हमारे खेती स्थान में है तो एला हम पौधशाला कौन ढंग ले कर सकते हैं ये बताते हो।
0: कई सन किसान इसे छोटे किसान है जेकर पास में इसे व्यवस्था नहीं हो सके तो वो खुला में अपन क्यारी बनाते, थरहा तैयार करते, तो खुला में तैयार करे बर वाला उठली ऊंची हुई क्यारी जेल हमन कही थे वैसे बनाना चाहिए ताकि बरसात आते ना तो पानी में वह डूबे झन। दूसरा का है भुरभुरा माटी अच्छा हुए ओला इस्तेमाल करना है ओकर क्यारी के ऊपर में। क्यारी के जो आकार है वो बहुत महत्वपूर्ण होते, एकर कई किसान भरना चारों मुड़ा एकदम चौड़ा क्यारी बना देते, तो क्यारी के चौड़ाई जेन है वो 1 मीटर रखा है, लंबाई 3 मीटर से 4 मीटर रख सकते है। जैसे पताल वताल के साग क्यारी तैयारी करा थे तो उकर लंबाई 50 मीटर तक भी किसान रख सकते है, लेकिन चौड़ाई ध्यान रखे 1 मीटर रखे और 2 क्यारी के बीच में बढ़िया 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के गैप भी रखा है।
1: अच्छा अच्छा, ये अब जैसे पौधशाला कहा था तो पौधशाला हम कौन कौन से फसल के सब्जी भाजी के लगा सकते हैं कि बागवानी की सबो किस्म के लगाया जा सके।
0: किसान भाई साग भाजी हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से होते, बहुत सारे साग भाजी जैसे मैं शुरुआत में नाम बताए हूँ ओकर तरह की जरूरत पड़ते। एकर अलावा भी कई चतुरा किसान मन का करते जैसे अब उमन मान लो गेहूं लगाए है।
1: हाँ।
0: अब गेहूं बाद में उमन ला कोनो साग भाजी के खेती करना है तो वो एक ठन होते दोना।
1: हाँ।
0: दोना में बीजल पहली लगा के रख देते।
1: हाँ।
0: वो लगा है गेहूं कटाई के पहली एक लाइन से, जैसे आजकल हार्वेस्टर में किसान भाई मन गेहूं काटते।
1: हाँ।
0: तो एक लाइन से वो 20 मीटर की दूरी में एक लाइन से वो पौधा ला रोप देते या दोना सहित ओला रख देते। अब जब वो दोना में जिन पौधा होते ओकर आकार लगभग 8 से 9 पत्ती के स्थमरी थे ओला वहाँ रख दे, दोना सही दोना गल जाते और वह बढ़िया लग जाते। और क्या है गेहूं जब पक के कटते ना तो हार्वेस्टर में भी कट जाते ओला नुकसान भी नहीं हुआ। गेहूं के जो नमी है ते नमी है मखना है या कद्दू वर्गी कोनो सब्जी है उमा वहाँ किसान ला मिल जाते नमी के उपयोग।
1: पौधशाला में एक तकनीकी शब्द घलो का थे पोट्रे या प्लग ट्रे, तो ये का

0: थे एला हमारे किसान संगी मन ला समझा के बताते विस्तार ले।
1: देखो आजकल के जिन बड़े व्यापक रूप से जिन खेती होत है ना, उमा बहुत बड़े मात्रा में किसान भाई मन ला थरहा नर्सरी के जरूरत पड़ते। तब बड़े बड़े जिन पौधशाला है वहाँ प्रो ट्रे या प्लग नर्सरी में पौधा तैयार करे जाते। ये जिन प्लग ट्रे है ये है प्लास्टिक के एक ठन ट्रे असन होते, उमा छोटे छोटे गड्ढा या सेल बने होते, उही मा का करते कि कोकोपीट जिन होते हमार नरियर के बूझ ओकर जो निकलते ओकर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद ओला बढ़िया मात्रा में मिला के बढ़िया उपयुक्त माध्यम तैयार करे जाते। और ओखर बाद ओमा बढ़िया एक एक चुन चुन के बीज ला ओमा रोपे जाते, लगाए जाते, तब जाकर के स्वस्थ और अच्छा पौधा ओमा से बन जाते। काबर की बीज
0: अच्छा
1: बहुत महंगा थे आज के डेट में बाजार में, और आजकल बहुत सारा किसान मन देसी बीजा तो उपयोग करते छे, साथ ही साथ जिन संकर किस्म के बीजा है वो
0: जी
1: बहुत
0: सर
1: महंगा मिलते हैं। 10-10 ग्राम बीजा वो बेचारा मन 250, 300, 400, 500 तक के लाते।
0: जी जी जी अब ये तो पौधशाला तो हम लगावा थन, स्थान के चयन घलो कर ड्रेन, एमा खातू माटी के वोट करन, तो कैसन कैसन खातू माटी कौन कौन विधि से हम दे सकथन, का खातू माटी हम जाते इला बता देते हो।
1: किसान भाई मन जब पौधशाला जब बनाते ना तो शुरुआत में एक अलग से विशेष खातू दे के ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, विषम परिस्थितियों में हमन खातू के उपयोग कर सकत हन। जैसे मैंने पहले बताया कि क्यारी जब बनाते तो हम बहुत बढ़िया अच्छा मात्रा में गोबर खाद ला डाल दे, काबर की पौधा जब हमारे थरहा जब तैयार होते बुआए करे लगाए बर ना, तब तक की स्थिति पर पर्याप्त खातू गोबर खाद से वो मिल जाते, लेकिन साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट के उपयोग हमन केहन सलाह दे हन वो करना चाहिए। लेकिन कई बार पौधा ऐसे हो जाते कि अचानक विषम परिस्थिति, ज्यादा पानी गिर गए या पानी भर गए फिर जल निकासी करीस, तो ऐसी स्थिति से बचे पर बहुत बढ़िया है 1.5% के जिन घोल है 19-19-19 करके खाद आते
0: जी
1: ओला बढ़िया से सिंचाई करे जा सकत है,
0: अच्छा अच्छा
1: वैसे स्प्रे कर दे से ना बहुत बढ़िया हो जाते।
0: बुआई बर बीज चयन के गोट करन, तो ये बीज चयन करत बखत का सावधानी हमला रखना चाहिए।
1: बीज चयन किसान ला प्रमाणित उच्च गुणवत्ता वाले और स्वस्थ बीज का चयन ही करना चाहिए। खास करके बीज के किस्म के विशेष जोर देते किसान भाई मन हा। अभी जैसे सीजन चलत है करेला के और भिंडी विंडी किसान भाई बहुत अभी बाजार में आवत है, तो चयन देख के किस्म के जिन भी मैंने बताया हूँ प्रामाणिकता गुणवत्ता और स्वास्थ्य बीज और संकर किस्म, एक बात महत्वपूर्ण है स्थानीय जलवायु और बाजार के मामला देख करके ही फसल और फसल के किस्म के चयन करे जाना चाहिए।
0: अच्छा, पौधशाला में बीज उपचार के आवश्यकता काबर पड़ते और एक लाभ का हमारे किसान संगवारी मन ले सकते, यूला बताते संगवारी मन ला।
1: बहुत किसान मन हा का है अपन बीजा जिन पुराना में रखे रहते उही ला उपयोग करते, वैसना बीज के उपचार करना बहुत आवश्यक होते, काबर की बाजार में जिन बीज मिलते तेन बीज तो पहले से उपचारित रहते बढ़िया से रहते, लेकिन यहाँ जिन किसान अपन जिन बीज के उपयोग करते तेना उपचारित करना बहुत जरूरी होते, काबर की कई प्रकार के ओमा फफूंदजनक रोग हो सकत है ओमा हुआ है या कई प्रकार के कीट हुए हो सकत है, तो अनुशंसित जैविक या रासायनिक बीज के जिन उपचार विधि है ओला अपनाना चाहिए। खास करके जैसे थेराम बावेस्टी ने बहुत सामान्य फफूंद नाशक है जिन किसान का उपयोग कर सकते, 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करे जा सकते हैं।
0: जी जैसे आपने बीज के बात कहा था, आजकल आधुनिक कृषि यंत्र आगे हावे और संकर किस्म के बीज घर मिलते, मान जाए कोनो किसान मन एक बार दो बार बीज जब उमा थे तो उमा और नया जो संकर बीज बाजार ले बिछा के उपयोग उमा कतेक अंतर देखे मिलते हैं।
1: संकर किस्म और हमर जिन देसी है जिन किसान भाई मन अपन खुद के बीजा इकट्ठा करके देसी लगाते दोनों में बहुत अंतर है। संकर जिन किस्म होते ओकर सीधा सीधा बात है कि वह 2 प्रकार के अलग विभिन्न प्रजाति ला मिला करके बनाए जाते, और वह सिर्फ पहला जनरेशन जिन लगी थे पहली जनरेशन है उही भर में वह उत्पादन बहुत बढ़िया देते, ओकर बाद जब दूसरा जनरेशन वही बीजा इकट्ठा करके वो दोबारा लगाही किसान है ना, तो वो पूरा का पूरा ओकर गुणवत्ता बिखर जाते खत्म हो जाते। हाँ हमन वैज्ञानिक भाषा में सेग्रीगेशन की थन कैरेक्टर सेग्रीगेशन वो हो जाते, तो इसलिए देसी किस्म और दोनों में बहुत अंतर है।
0: बात करन हमन बोनी के, तो पौधशाला में बीज के बोई के कौन कौन विधि किसान संगवारी मन अपना थे और अपना करके कौन से विधि ला अच्छा माना जाता है।
1: जिन अभी हमन चर्चा करें खुली में जिन उथली क्यारी बनाया जाते एला जानना जरूरी है कि क्यारी के दिशा कौन से होना चाहिए, दिशा होना चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जिन है वो क्यारी होना चाहिए, और जिन बुआई के विधि है वो लाइन से करना चाहिए और वो बुआई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे क्यारी बना दी किसान है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर तो ओकर बुआई जिन कराए ओला पूरब से पश्चिम दिशा की ओर कराए। अब बुआई करे बर का करना है ओला पूरा आखिरी बुआई जहां करते भूरभूरा मिट्टी डाल दे और बढ़िया पतला से धीरे धीरे एक लाइन खींच ले, और बहुत ज्यादा घना बुआई मत करे। घना बुआई करे से क्या हो जाते कि जिन थरा मन है वह बहुत तेजी से बढ़ जाते, बहुत पतला पतला बोलकर जिन मुख्य तना है वो हो जाते, मतलब पौधा जैसे पताल के लगावत है पताल के हाइट हो जाए 8-9 इंच के, लेकिन वो कर जिन मुख्य तना एकदम पातर रही
0: पौधा तंत्र नहीं करे कहने
1: तंत्र नहीं करे हाँ तो वो खराब हो जाते। तो ये ढंग से उचित दूरी और उचित गहराई के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा गहराई करे से क्या अंकुरण कारण प्रभावित हो जाते और

0: बहुत उथली रखे से बीजा सुखा जाते। अब बहुत हल्की सिंचाई करना जरूरी, जैसे बुआई करिस ना हल्का सिंचाई कर देना है, बहुत ज्यादा तेज पानी के प्रवाह से सिंचाई करी ना तो वो बीजा छटक जाते, तो ऐसे में नुकसान भी हो सके।
1: ये बढ़िया बताता हूँ काबर की पहली ले कामा लाभ मिली कामा नहीं मिली ओकर पहली हम तैयार रही तो हमारे खेती है बने हुई। डॉक्टर साहब आगू हम जानना चाहबो की सिंचाई के गोट बात करें तो पौधशाला में कौन कौन से विधि ले सिंचाई करे जा सकते।
0: पौधशाला में हल्का और नियमित सिंचाई तो महत्वपूर्ण है ही है, ओकर अलावा आवश्यकता अनुसार फवारा विधि है, रोज कैन मेथड बोलते हैं हमन हमारी यहाँ लोकल भाषा में हजारा की थन, ओकर तरीके से करे जा सकते हैं। जिन संरक्षित खेती होते वहाँ माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लगे रहते, मिस्टिंग सिस्टम लगे होते, ओकर से वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होते और अधिक पानी देने से जड़ में ऑक्सीजन के कमी हो जाते और रोग के खतरा बढ़ जाते, जबकि कम पानी देने से पौधा कमजोर हो सकते है। एकर कारण उचित माध्यम और उचित नमी बनाए रखना आवश्यक है, विशेष करके अंकुरण के समय में पानी में कमी नहीं होना चाहिए और दूसरा जल भराव की स्थिति भी नहीं होना चाहिए, दोनों व्यवस्था का ध्यान रखना है किसान।
1: डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय जी आप मन आज हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आए हो और आकर के उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण ए विषय में बहुत सुघर विस्तार ले हमारे किसान संगवारी मल्ला जानकारी प्रदान करे हो, एकर खातिर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ये रही से क्रम आज की सलाह जेमा विषय रही से उद्यानिकी फसल के पौधशाला निर्माण विधि, विशेषज्ञ रही ने डॉक्टर देवेंद्र उपाध्याय कृषि महाविद्यालय भाटापारा और इकर संगोट बात करी हमारे सतीश भाई।

0: करके किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: और संगवारी हो, अब बता देता ना एक सूचना। संगवारी हो, अवैया शुक्रवार 21 अगस्त के प्रसारित हो या हेलो चौपाल कार्यक्रम के विषय हो ही गाजर घास के दुष्प्रभाव और प्रबंधन, आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान पर हमार स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आप अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमारे तीर फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है 4003482, दूसर फोन नंबर है 4003483, और तीसरा फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार 21 अगस्त के 11:30 से 12 बजे तक करे जाही संगी हो, और ये कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही, तो ये दो रही से सूचना। और सतीश भाई, अब बता दे संगवारी मनला कृषक प्रश्न मंच क्रम के अंतर्गत आज के प्रश्न।
4: आज के प्रश्न हवे, उद्यानिकी फसल बर स्थान चयन करत बेरा का ध्यान देना चाहिए। प्रश्न एक बार और सुन लो संगवारी हो, उद्यानिकी फसल बर स्थान चयन करत बेरा का ध्यान देना चाहिए। एकर उत्तर हमर तीर एक सप्ताह के भीतरे भीतर पहुंच जावे।
3: और पाछू हफ्ता जो प्रश्न पूछे रहे आज के दिन सतीश भाई, तो उन्होंने बता देता है खेत के मेड़ में का फसल लगाया जा सकते। तो एक सही जवाब है फल के अंतर्गत पपीता केला और साग में मुनगा। और सही जवाब भेजिए हमर संगवारी मन के नाम बता देता है, तो सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम है बठेना पाटन ले अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा और प्रहलाद और मुरली वर्मा।
4: कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। गर्रापार बांधा बाजार जिला राजनांदगांव ले राकेश साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू मन। कोटना पानी डोंगरगढ़ ले कैलाश कुमार मंडावी, लीलेश्वरी मंडावी, रूपेश कुमार मंडावी, गरिमा नोनी, छनिस्का और दादू मन।
3: लोरमी चचेड़ी ले है कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। और परसा टोला ले है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया और तुषारिणी मसिया। तो ये सब संगवारी मनला बहुत बहुत बधाई, इखर जवाब जो है वो सही है।
4: दीदी गोट बात तो हो गए बड़कन, मनोरंजन खातिर गीत सुनथन
3: बिल्कुल।
4: जेला स्वर देवत हवे दुखिया बाई और धुरवाराम मरकाम।

0: जतन करो धरती के जतन करो रे जतन करो भूया के।
1: अभी सुनत रहें ये गीत जिला स्वर देवत्री साहब धुरवा राम मरकाम और दुखिया भाई।
2: किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और सतीश अब बेरा हुआ थे जाए के, तो जाए के पहली संगवारी मन बता देथन काली के कार्यक्रम।
1: संगारी हो काली चौपाल में हो ही कौन इन कार्यक्रम हेलो चौपाल, विषय हो ही गाजर घास के दुष्प्रभाव और प्रबंधन, विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, गीत संगीत तो होबे करी संगी, तो देवा विदा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला सतीश कुमार यदू
2: और विनीता के राम राम।

किसान वाणी कार्यक्रम हम सुन रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिट्ठी मिली।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोनाली
1: और नेमीचम का नमस्कार।
0: श्रोताओं, एक आवाज कहीं दूर से आती है और कोई उसे अपनेपन से सुनता है, यही तो है रेडियो की खूबसूरती, आवाज और श्रोता के बीच एक अनोखा रिश्ता। आज विश्व रेडियो श्रोता दिवस है। इस खास अवसर पर आकाशवाणी बिलासपुर की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रेडियो की दुनिया में श्रोता सिर्फ कार्यक्रम सुनने वाले नहीं होते, वे हमारी ताकत, हमारी प्रेरणा और हमारे कार्यक्रमों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। आपकी चिट्ठियां, फोन कॉल, संदेश और सुझाव हमें बताते हैं कि हमारी आवाज आप तक किस तरह पहुंच रही है और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। रेडियो और श्रोता का रिश्ता सचमुच बहुत खास है। आवाज दिखाई नहीं देती, लेकिन दिल तक पहुंच जाती है और इस रिश्ते को मजबूत बनाती है आपकी बातें, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी चिट्ठियां। तो आज इस खास दिन पर अपने प्यारे श्रोताओं के नाम समर्पित है आपका अपना कार्यक्रम चिट्ठी मिली। आइए खोलते हैं आज की पहली चिट्ठी और सुनते हैं हमारे श्रोता के मन की बात। तो नेमीचंद जी,
1: जी
0: पहली चिट्ठी आई है
1: हाँ।
0: ग्राम गुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति का
1: जी।
0: ये लिखते हैं, सर्वप्रथम ये 20 अगस्त के विश्व रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर पूरे आकाशवाणी परिवार एवं समस्त श्रोता साथियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं भेज रहे हैं। साथ ही लिखते हैं, 13 अगस्त का प्रसारित छत्तीसगढ़ी गीतों पर फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर और आपकी पसंद बहुत ही अच्छा लगा। 16 अगस्त का ग्राम सभा कार्यक्रम जिसमें आप मन के गीत सुनाए गए बहुत ही सुंदर लगे, प्रस्तुतकर्ता को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 19 अगस्त का प्रसारित ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम जिसे हमेशा की तरह अपने दिलकश अंदाज में प्रस्तुत किया रत्ना ने, वो भी काफी पसंद किया है, बधाइयां भेज रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: मोनाली जी, आज रेडियो श्रोता दिवस है और हमारे भारत भर के श्रोता एक जगह का इकट्ठे होकर एक बड़ा विशाल आयोजन करते हैं। वो आयोजन इस साल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 श्रोता भारत के 18 राज्यों से आए हैं और

0: रेडियो के श्रोता आए हैं, रेडियो से जुड़े अनाउंसर, उद्घोषक, कार्यक्रम अधिकारी
1: जी
0: ये सब आए हैं। एक बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है। मोनाली जी, अब लेते हैं अगला पत्र।
1: जी,
0: अगला
1: जी।
0: पत्र हमें मिला है परसोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। ये लिखते हैं, हमारे कार्यक्रमों को ये बड़े ध्यान से सुनते हैं और हमारे सारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। साथ ही लिखते हैं, 13 तारीख की चिट्ठी मिली कार्यक्रम, हमें बहुत पसंद आया। साथ ही 7 अगस्त का ट्रैफिक अपडेट कार्यक्रम बहुत पसंद आया और रजनीगंधा जिसे प्रस्तुत किया अंशुल ने, वो भी बहुत अच्छा लगा, जो कि सुरेश वाटकर जी पर केंद्रित था। 10 तारीख को सुबह 8 बजे अमराई कार्यक्रम और साथ ही तुम्हर गोठ हमर गीत कार्यक्रम मानस तिवारी ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। सभी कार्यक्रम काफी अच्छा लगा। और लिखते हैं मोनाली जी, हमारे भद्रवाह में तो जम्मू कश्मीर में मौसम बहुत ठंडा है, नजारा भी बहुत खूबसूरत है।
1: जी।
0: तो परसोत्तम जी, आपने पत्र लिखा, हमारे कार्यक्रमों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और साथ ही हम भी बता दें कि हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का मौसम भी बड़ा सुहावना है, हल्की हल्की बारिश रोज हो रही है।
1: जी नेमीचंद जी, तो लेते हैं अगला पत्र जो भेजा है रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, प्रदीप कुमार साहू एवं पूरा माखीजा कुटुम्ब। ये बनियापारा धमतरी से लिख रहे हैं
0: जी।
1: 15 अगस्त 5:05 को आकाशवाणी बिलासपुर से स्वतंत्रता दिवस पर एक रेडियो रिपोर्ट हमने सुनी जो स्थानीय कार्यक्रमों पर केंद्रित थी। वाचन सुनील चिपड़े का, आलेख और प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की और संयोजन था सुप्रिया भारतीयन मैम का। तो ये इन्होंने काफी पसंद किया है। साथ ही 16 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने और रजनीगंधा आरती की प्रस्तुति में और कानून की बात कार्यक्रम जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध और निवारण अधिनियम 2013 इसके बारे में श्रीमती इंद्र कुमार तिवारी जी से बातचीत की गई, वो भी काफी पसंद कर रहे हैं
0: जी।
1: साथ ही 17 अगस्त का सुबह 10 बजे का तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम श्वेता की प्रस्तुति में और शाम का रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें काफी पसंद आया, बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं
0: जी।
1: 18 अगस्त का रजनीगंधा कार्यक्रम जो गुलजार साहब और अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर केंद्रित था और इसकी प्रस्तुति ऐश्वर्या की थी, काफी पसंद कर रहे हैं। 19 अगस्त का अमराई कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं। साथ ही रात को 8 बजे का विशेष कार्यक्रम कैच द रेन कैंपेन, ऊर्जाधानी कोरबा अब जलधानी भी, ये भी इन्हें काफी अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से इन्हें काफी जानकारी मिली। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतन जी को और सहयोगी महावीर बरघा को बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये विश्व सद्भावना दिवस की शुभकामनाएं और विश्व श्रोता दिवस की भी ढेरों सारी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं। इन्होंने आज का मतलब 20 अगस्त का माटी के स्वर और आपकी पसंद भी पसंद किया है जिसकी प्रस्तुति मानस तिवारी की थी। ये सारे कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है। आपने इतना सारा समय हमारे लिए निकाला, इतने सारे प्यारे शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल मिला है हमें लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। 13 अगस्त के ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम में अंशुल ने श्रोताओं द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनाए, जिसके शानदार प्रस्तुति के लिए अंशुल गुलकारी और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक और मेल मिला है मोनाली जी।
1: जी।
0: छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, राम किशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू का
1: जी।
0: ये लिखते हैं, हमारे कार्यक्रम के गीत उनके मन को मोह डालता है। आपको हमारे कार्यक्रम के गीत अच्छे लगते हैं, आपने हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नेमीचंद जी, लेते हैं अगला मेल जो आया है सिंगारबाड़ी गुटकू से भगतराम पटेल, किशन, सोनम और मानी पटेल का। 15 अगस्त को सुबह दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश और उसका आंखों देखा हाल अनुप्रसारित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के भाषण का प्रसारण भी किया गया। इन सभी कार्यक्रमों के अनुप्रसारण के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को ये श्रद्धेय बधाइयां दे रहे हैं। आपके इस मेल के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मोनाली जी, ये मेल मिला है हमें माँ महामाया चौक मेघा पारा चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल,

0: दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल। आप लिखते हैं कि हम लोग हैदराबाद तेलंगाना में हैं, लेकिन मोबाइल ऐप से सभी कार्यक्रम सुन लेते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
0: हमारा मोबाइल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलता है और हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और हमारे आकाशवाणी के बिलासपुर के सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं और साथ ही श्रोता साथी हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप एक नया ऐप हमारा है वेव्स ऐप, ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से करके अच्छी क्वालिटी में अच्छी गुणवत्ता में भारत में स्थित किसी भी आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम सुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आपने पत्र भेजा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेते हैं अगला मेल जो आया है मगरपारा बिलासपुर से। रेणु शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, वैभव और विनी मिश्रा लिखते हैं, 19 अगस्त का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम अंतरा के प्रस्तुति में बहुत अच्छा लगा। साथ ही यह आकाशवाणी परिवार को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। इन्हें हमारे सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे लिखते हैं, आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, प्रस्तुति बड़ी गजब की रहती है, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, खासकर पशुपालन और कृषि से संबंधित जानकारी ज्यादा अच्छा लगता है। अगस्त माह में 1 से 7 तारीख को हमने शिशु स्तनपान सप्ताह मनाए हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी से जो जानकारी मिली वो काफी अच्छी लगी। साथ ही तुहर गोट हमर गीत, आपकी पसंद, ईमेल, फरमाइशी गीत, हेलो आपकी पसंद, माटी के गीत, आप मन के गीत, युवा जगत, महिला सभा कार्यक्रम, रजनीगंधा, सवाल जवाब कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं और साथ ही आने वाले विशेष पर्वों की बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को सुने, हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेते हैं अगला पत्र जो आया है मदनपुर कवर्धा से।
0: जी।
1: श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू लिखते हैं, 17 अगस्त का तुहरगोट हमर गीत काफी अच्छा लगा, अपने नए अंदाज में इसको श्वेता पांडे ने प्रस्तुत किया, काफी मनभावक लगा। इस कार्यक्रम से इनका बहुत ही मनोरंजन हुआ और साथ ही इनको सीख व प्रेरणा भी मिली। बहरहाल सुंदर प्रस्तुति के लिए श्वेता पांडे और आकाशवाणी परिवार को बधाइयां दे रहे हैं।
0: जी।
1: आपको भी मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रोहासी से डगेसर राम साहू, गौरव साहू, घनश्याम साहू, नूतन साहू, अलका साहू लिखते हैं, हम आकाशवाणी बिलासपुर के नियमित श्रोता हैं और चिट्ठी मिली कार्यक्रम, ग्राम सभा कार्यक्रम, माटी के स्वर कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, आपने पत्र लिखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेते हैं अगला ईमेल जो आया है दतरिंगी भाटापारा से।
0: जी।
1: नोखीलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा का।
0: जी।
1: आकाशवाणी बिलासपुर परिवार व सभी श्रोता परिवार को 20 अगस्त रेडियो श्रोता दिवस की शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई देते हुए लिखते हैं, 19 अगस्त का प्रसारित युवा दिलों की धड़कन युवा जगत कार्यक्रम जिसे पेश किया अपने दिलकश अंदाज में महक ने, ये काफी अच्छा लगा। रोचक जानकारी के साथ युवा पसंद के गीत काफी अच्छे लगे, साथ ही सवाल जवाब क्रम में नए सवालों को सुनकर इनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। बधाइयां देते हुए ये एक सुझाव भी दे रहे हैं।
0: जी।
1: ये लिखते हैं कि सवाल जवाब क्रम में अगर सवाल पूछते समय थोड़ा धीरे बोले और सवालों को दोहराए तो लोगों को वो सवाल सुनने में और समझने में आसानी होगी। साथ ही पत्र भेजने के लिए जो पता बताते हैं वो भी फिर से दोहराए और धीरे धीरे बताए, तो ये आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। आपको मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये पत्र आया है विनेश कुमार रागिनी और मुस्कान बरेली कैंट चनेहटी उत्तर प्रदेश से।
1: जी।
0: ये लिखते हैं, 13 अगस्त को चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, साथ ही 17 अगस्त को यादों के झरोखे से कार्यक्रम सुनने को मिला जिसे अपेक्षा ने प्रस्तुत किया था और आज सुबह में बहुत सारी अच्छी जानकारियां भी सुनने को मिली। 18 अगस्त को सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में गीतों का चयन बहुत ही अच्छा था, रजनीगंधा में ऐश्वर्य ने गुलजार साहब पर एक अच्छी प्रस्तुति दी। 19 अगस्त को यादों के झरोखों से कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, रजनीगंधा में रत्ना ने उत्पल दत्त के कैरियर को लेकर एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। आप सभी को शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने भी हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र प्रेषित किया।

0: इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। निमिचंद जी, लेते हैं अगला मेल जो आया है गांव अलगीडाड़ जिला कोरबा से।
0: जी,
1: जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, विभा और श्रीमती फुलजी यादव लिखते हैं।
0: जी,
1: 14 अगस्त का आज सुबह कार्यक्रम अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता महावीर बरघा को बधाई। 19 अगस्त का युवा जगत कार्यक्रम महक की प्रस्तुति में अच्छा लगा और साथ ही 19 अगस्त का ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत बेहतरीन लगा। डॉक्टर सुप्रिया भारती मैम को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। मेल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मोनाली जी, अगला मेल मिला है हमें
1: जी,
0: चांपा से सावित्री इंगले, कविता देवांगन, विनीता साहू, प्रभा साहू, मंजू लता और सुनीता ध्रुव का। 15 अगस्त के सुबह में स्वतंत्रता दिवस पर सार्थक चर्चा और शानदार देशभक्ति से ओतप्रोत गीत पेश किए गए और उसी दिन सुगम संगीत और चित्रपट संगीत में भी शानदार देशभक्ति गीतों के संग रोचक बातें भी बताई गई। ये कार्यक्रम सुनने में बहुत मजा आ गया। सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी बिलासपुर और महावीर बरगाह को ढेरों बधाइयां। आपने भी हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र प्रेषित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और निमिचंद जी, ये हमें बधाइयां देते हुए एक मेल आया है
0: जी,
1: विश्व रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर
0: जी,
1: सारे सम्माननीय रेडियो के सुधी श्रोता, सारे कंपेयर और आकाशवाणी के समस्त परिवार को सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन बधाइयां भेज रहे हैं, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। आपको भी रेडियो श्रोता दिवस की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
0: मोनाली जी, अगला मेल आया है भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सूरज बारीकर, नारायण यदु लिखते हैं। हमें 13 अगस्त का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसे पेश किया मोनाली और नेमीचंद ने। 13 अगस्त को अंशुल गुलकरी की ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी बेहद पसंद आई। साथ ही 15 अगस्त को मानस तिवारी जी की ईमेल करे गीत सुने की प्रस्तुति भी अच्छी लगी। 16 अगस्त को आरती द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा भी पसंद आया। खूबसूरत पेशकश के लिए बधाई। 16 अगस्त का ग्राम सभा कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया, जिसमें कजरी दीदी की आप मन के गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति अच्छी लगी। 19 अगस्त को रत्ना द्वारा रजनीगंधा की प्रस्तुति भी बेहद पसंद आई। 20 अगस्त को मानस तिवारी द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम आज सुबह और सदाबहार नगमे और माटी के स्वर बेहद पसंद आए। सुंदर पेशकश के लिए मानस तिवारी को बहुत बहुत बधाई। आपने हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रसेडा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और कुमार डीके साहू लिखते हैं, बिलासपुर परिवार और सभी श्रोता भाई बहनों को रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अगस्त का चिट्ठी मिली कार्यक्रम अच्छा लगा। 16 अगस्त का ग्राम सभा और आप मन के गीत कार्यक्रम कजरी दीदी की प्रस्तुति में, साथ ही 19 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने और रजनीगंधा कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में भी अच्छा लगा। 20 अगस्त का माटी के स्वर और आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। अच्छे गीतों के चयन के लिए प्रस्तुतकर्ता मानस तिवारी को बहुत बहुत बधाइयां जा रही है। आपको भी मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मोनाली जी, आखिरी मेल मिला है हमें
1: जी,
0: इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा का। आप लिखते हैं, 15 अगस्त के दिन बिलासपुर जिले की स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट हमें घर बैठे ही सुनने को मिला। तकनीकी सहयोग पवन थवाइत और माइकल एक्का का, प्रस्तुति सहयोग सुनील चिपड़े का, प्रस्तुति नेमीचंद का और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया जी का। बहुत ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम रहा, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही आप लिखते हैं, 16 अगस्त को आरती जी के द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 17 अगस्त का ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 18 अगस्त को ऐश्वर्य के द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। 19 अगस्त को रत्ना जी के द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम जो उत्पल दत्त जी पर केंद्रित था बहुत अच्छा लगा। आपने भी हमारे कार्यक्रमों को सुना, हमें पत्र प्रेषित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नेमीचंद जी, ऐसे ही हमारे श्रोता हमें पत्र लिखते रहे, इसके लिए हम अपना पता बता देते हैं
0: जी।
1: ईमेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com और पोस्ट कार्ड का पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार भरी पत्रों का, ईमेल का, तो हमें दीजिए इजाजत।

0: चिट्ठी मिली। ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, पेश किया मोनाली ठाकरे और नेमी चंद साहू जी ने। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है और अब एक साइबर के संदर्भ में सूचना और जानकारी।
1: नमस्कार, छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान में सुनिए काम की बातें। साथियों, सच्चा मित्र व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अपने बचपन के पुराने मित्रों से हम अपने अंतर्मन की हर बातें साझा किया करते हैं, पर अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। जिसे हम कभी प्रत्यक्ष देखे नहीं, कभी मिले भी नहीं, किंतु फेसबुक, इंस्टाग्राम या मोबाइल फोन से बातों ही बातों में चंद दिनों में वो हमारा अजीज मित्र बन जाता है। हम उसे अपनी निजी बातें, निजी तस्वीर या विश्वास में आकर दोनों के बीच बनाई गई उन पलों की वीडियो भी सौंप देते हैं। किंतु हमें सच का आभास तब होता है जब वह कथित मित्र वीडियो या तस्वीरों को सार्वजनिक करने की धमकी देकर सब कुछ लूट लेना चाहता है। ऐसे साइबर अपराधियों से बचकर रहें, क्षणिक भावावेश में कभी ना आए। मदद के लिए डायल 1930 की सहायता लें या अपने सच्चे मित्र पुलिस से संपर्क करें। जनित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़।
0: साइबर जागरूकता पर यह संदेश अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:20 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उपशास्त्रीय गायन। उपशास्त्रीय गायन में विदुषी गिरिजा देवी द्वारा गायी कजरी आपके लिए प्रस्तुत है। सावन पर आधारित ये कजरी।

विदुषी गिरजा देवी का गाया ये कजरी आपने सुनी। बोल थे धीरे धीरे सावन झर। आइए एक बार फिर विदुषी गिरजा देवी को सुनते हैं कजरी के साथ। बोल हैं रुन झुम के बरसन लागी।

0: उपशास्त्रीय गायन अभी आपने सुना, विदुषी गिरजा देवी द्वारा कजरी प्रस्तुत की गई। छोटा सा अंतराल, फिर लौटते हैं कार्यक्रम में।
1: मैं श्रीमती मधु शर्मा कुछ पंक्तियाँ कहना चाह रही हूँ। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। हर बेटी को शिक्षा का अधिकार, यही है प्रगति का आधार। पढ़ी लिखी बेटी रोशन करेगी घर परिवार और देश। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान, शिक्षा से ही मिल सकती है सबको अलग पहचान।
2: मैं श्रीमती रचना दुबे दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूं। शिक्षा ही नारी का गहना है, शिक्षा ही नारी का गहना है, इसे कभी न खोना है। तभी बेटी पढ़ेगी, तभी प्रगति बढ़ेगी। शिक्षा है संजीवनी, शिक्षा है सुख का सार। बिना शिक्षा के होता है जीवन निराधार।
0: लीजिए, प्रस्तुत है पंडित राजेंद्र प्रसन्ना द्वारा हिमालयन धुन।

0: पंडित राजेंद्र प्रसन्न द्वारा बांसुरी पर बजाया हिमालया धुन अभी आपने सुना। ये था शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जिसमें हमने उप शास्त्रीय गायन सुना और बांसुरी वादन सुना। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: साथ मैं मुकेश कुमार
0: आकाशवाणी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दो याचिकाएं 11वीं से

0: 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जाँच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदंबर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
3: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
4: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया।

0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
1: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही और उनकी एक झलक पाते ही
2: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे,
3: ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

16 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान, लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के नाम से।

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती, बेफिक्र, अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके। बस इसी उम्मीद पर सैफ आगे बढ़ रहे थे।

फिर उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी कच्ची।

सफलता के कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

फेल चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ और सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया और बस वो रम गए इस किरदार में।

वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं। इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

फिल्म में सैफ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे, और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

फिल्म परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

अदाकारा में सेफ के किरदार लंगड़ा त्यागी को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि रोमांटिक इमेज में दिखने वाले सेफ इस तरह के नेगेटिव किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा सकते हैं। सभी उनके अभिनय के कायल हो गए। फिल्मी करियर से जुड़ी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सेफ की कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी लगता है। इन फिल्मों में सेफ के अभिनय के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कुछ ऐसी फिल्में हैं, रेस। इस फिल्म में कम संवाद में भी सेफ ने बेहतरीन अभिनय की मिसाल छोड़ी। टशन, इस फिल्म में वो एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कुर्बान, एक आतंकी का किरदार सेफ के लिए भी मुश्किल था। लव आजकल, इस फिल्म में दो अलग अलग किरदार और दोनों ही बेहतरीन। और एक जासूस की भूमिका में नजर आए अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म एजेंट विनोद में।

अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आमतौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि एक 25-30 साल के युवा का किरदार आसानी से निभा जाए।

मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव आज।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और कॉकटेल।

सेफ का कहना है कि वो अब अच्छी स्टोरी देखकर ही फिल्म साइन करते हैं, क्योंकि उनके लिए ढेर सारी फिल्में करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सेफ ने बीते कुछ सालों में लीग से हटकर फिल्में की हैं। इन फिल्मों की फहरिस्त में ये नाम शामिल है, वो गोवा गॉन, फैंटम, रंगून, काला कांटी, बाजार और शिफ्ट। शेफ फिल्म के लिए सैफ ने एक 5 सितारा होटल में ट्रेनिंग की। बदलते दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्रेट गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज, सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत हर रोज दस्तक नहीं देती, कभी कभी किसी की निगाह में, किसी की मुस्कान में, या किसी की खामोश परवाह में वो यूं उतरती है कि सारी उम्र उसकी महक साथ चलती रहती है। ऐसे एहसास किस्मत वालों को नसीब होते हैं। जब भी जिंदगी किसी के रूप में ये अनमोल इनायत बख्शे, उसे अपना हक नहीं रब की मेहर समझकर संभाल लेना, क्योंकि दिल को मोहब्बत का आसमान हर बार नहीं मिलता।

0: कभी कभी
1: ये दुनिया चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, उसकी सारी रौनक तेरी दो निगाहों के आगे फीकी पड़ जाती है। अब तो मेरी धड़कनों का पता भी इन्हीं आंखों से पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरा सारा जहां इन्हीं में आकर बस गया है। इन्हीं में सुबह की पहली किरण और इन्हीं में शाम की आखिरी रोशनी, मेरी हर राह अब इन्हीं की तरफ जाती है।

उसके आने की आहट भर से जैसे मौसम अपना मिजाज बदल लेता है, हवाएं कुछ ज्यादा ही महकने लगती हैं, फूलों को जैसे मुस्कुराने की वजह मिल जाती है, धूप भी नर्म पड़ जाती है और शाम अपने आंचल में सुनहरी रंग समेट लाती है। उसकी एक मुस्कान से दिल की वीरान बस्तियां आबाद हो उठती हैं। लगता है जैसे बहार किसी बाग में नहीं, उसके कदमों के साथ ही चली आ रही हो।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेम कभी शब्दों से नहीं, पलकों की हल्की सी झपक और नजरों की मासूम शरारत से अपना परिचय देता है। एक संकोच भरा इशारा दिल में अनगिनत ख्वाब जगा देता है, तो एक मुस्कान सारी दुनिया को भुला देती है। मिलने की चाह है, मगर साथ ही दुनिया की नजरों का लिहाज भी। यही झिझक, यही छेड़छाड़ और यही अनकहे वादे प्रेम को और भी मधुर बना देते हैं। जब दो दिल एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझने लगते हैं, तब हर खामोशी अपने आप में सबसे हसीन इजहार बन जाती है।
1: पलकों

सामने वो हर रोज नजर आती है, पर जैसे हमारे हिस्से की नहीं। उसकी एक झलक ही दिल की धड़कनों को बदल देने के लिए काफी है। फिर भी न जाने कैसी दूरी है जो कभी मिटती ही नहीं। आंखें हर पल उसी राह पर ठहरी रहती हैं, जहां उसके आने की उम्मीद बसती है। मौसम बदलते रहते हैं, दिन बीतते जाते हैं, मगर इंतजार का रंग फीका नहीं पड़ता। प्रेम का सबसे गहरा दर्द शायद यही है, जब कोई इतना करीब हो कि दिखाई दे और इतना दूर कि छू भी ना सके। तब हर दिन एक आस बन जाता है और हर रात उसी अधूरी चाह का नाम।

0: सावन केवल धरती को ही नहीं मन को भी भिगा देता है। हवा का हर झोंका जैसे प्रेम का कोई अनकहा संदेश लेकर आता है। प्रकृति का हर स्वर हृदय में नई उमंग जगा देता है। ऐसे में मन मोर की तरह थिरक उठता है और भावनाएं किसी बहती नदी की धारा सी अपने आप दिशा खोजने लगती हैं। विरह हो तो बादलों में प्रिय का संदेश सुनाई देता है और मिलन हो तो हर बूंद उत्सव बन जाती है।
1: सावन का महीना पवन करे सोर।

रे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

आज के छाए गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

tempo vola. Prendilo, prendilo, amore mio.

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi